एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 6वीं तिथि है। तद अनुसार आज दिनांक 28 अगस्त 2026 शुक्रवार है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी

0: 2500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में चौथा स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए चिंतन। चिंतन का विषय है रक्षाबंधन।

श्रोताओं नमस्कार। चिंतन में आज का विषय है रक्षाबंधन। हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है। समय समय पर मनाए जाने वाले ये तीज त्योहार हमारी सांस्कृतिक चेतना का स्तंभ है और हमारे दैनिक जीवन की नीरसता को समाप्त करके जिंदगी को जीवन

0: और आनंदित बनाए रखते हैं। हर एक पर्व और त्योहार की कोई न कोई एक अंतर कहानी भी होती है जो प्रायः धार्मिक ग्रंथों से उद्घाटित होती है या फिर जनश्रुतियों में उनका उल्लेख प्राप्त होता है। दीपावली, होली, ईद, दशहरा, नवरात्रि आदि त्योहार देश की विविधता को दुनिया के सामने लाते हैं और इन्हीं त्योहारों के कारण संपूर्ण विश्व को भारत की एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश पहुंचता है। कुछ पर्व समाज में पारिवारिक रिश्तों को भी दर्शाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन अर्थात राखी। रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर आधारित है और भाई बहन के परस्पर स्नेह व प्रेम को दिखाता है। भारतीय पर्व परंपरा में रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन श्रावण माह पूर्णता को प्राप्त करता है। रक्षाबंधन वास्तव में भाइयों द्वारा अपनी बहन को उसकी सुरक्षा और देखभाल करने का वचन देने का दिन है। इस पर्व के त्योहार के और भी गूढ़ रहस्य हैं। जैसे भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं, उसी भावार्थ में हरेक सक्षम व्यक्ति को समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता या रक्षा करने का दायित्व लेना चाहिए। रक्षाबंधन में भाई एक प्रतीक है, लेकिन पुरुष के रूप में व्यक्ति के पास अपनी पत्नी व बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार राजा के पास अपनी प्रजा की खुशहाली, उसकी संपन्नता और प्रजा की रक्षा का दायित्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच जब युद्ध की स्थिति बनी तो देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने युद्ध पर जाने से पहले अपने पति को रक्षा सूत्र बांधा था। इसी क्रम में एक ऐतिहासिक दृष्टांत यह भी आता है कि हाड़ी रानी कर्मावती ने शत्रुओं से युद्ध में विजयी होने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सुरक्षा और सहायता की मांग की थी। रक्षाबंधन का पर्व आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है और ये दिन हमारी सामाजिक एकता व सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, जिसका विषय था रक्षाबंधन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के अमीर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

समूह स्वर में अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। और श्रोताओं, इसी के साथ पर्ण कार्यक्रम यही संपन्न।

0: 那 PX 什么？
1: FMN 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण को ग्राम तथा वन वासियों से हृदय स्पर्शी स्नेह प्राप्त हुआ। ग्राम वधुओं ने सीता जी के चरण छूकर उनकी मंगल कामना की, उन्हें आशीष दिया कि जब तक पृथ्वी कायम है उनका सुहाग बना रहे, वे पार्वती की भांति पति का प्रेम प्राप्त करें और वन से लौटते हुए इसी मार्ग से जाएं। लक्ष्मण ने जब विनीत भाव से आगे का मार्ग पूछा तो ग्रामवासियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। कर्म की गति कोई नहीं जान सका है, ऐसा मानकर वनवासियों ने उन्हें सुगम मार्ग बता दिया। स्नेह सिक्त वचन से श्री राम ने उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया। लौटते हुए स्त्री पुरुषों को ये विषाद है कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं। यदि उसे इन्हें वनवास ही देना था तो व्यर्थ ही भोग विलास के साधन बनाए। व्यथित ग्रामवासी विधाता की करनी का विश्लेषण करते हैं। किसी को लगता है कि ये ब्रह्मा के बनाए न होकर अपने आप प्रकट हुए हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा इनका अनुपम रूप देखकर इन पर मुक्त हो गया होगा और इन्हीं की छवि में स्त्री पुरुष बनाने लगा होगा, किंतु बहुत यत्न करके भी अपनी रचना को इन जैसा सुंदर नहीं बना सका होगा, तो ईर्ष्यावश इन्हें वन में छिपाने की योजना बना ली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग, जो यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारी आज की प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती नी बात। वहीं कार्यक्रम पागड़ी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। कार्यक्रम वातायन का समय रहेगा प्रातः 7:20 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है रक्षाबंधन और वार्ताकार हैं निशा राठौड़। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10:00 एवं दोपहर 12:00। समाचार आप सुनेंगे प्रातः 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रातः 9:00। दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुजुल से आप सुन पाएंगे प्रातः 8:15 पर। वहीं राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00। वहीं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 11:30 पर।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। वहीं शाम 7:00 आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रम चौपाल और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। विविध भारती का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 9:00। वहीं जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर। हमारी सायंकालीन सभा में समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती निवाद।
1: खेती निवाद कार्यक्रम हमारा सब भाइयों ने वलजी भाइयों राम राम। देखो किसान भाइयों, खेती निवाद कार्यक्रम ने माध्यम थकी आज आप बात करी रहा हूं कि बकरी पालन आय नो एक अच्छो स्त्रोत कहवा है। किसान भाइयों, बकरी पालन आय नो एक महत्वपूर्ण ने बहुमुखी स्त्रोत है, क्योंकि आने थकी दूध,

0: मांस, खाल न खाद जेवा उत्पाद भी मले हैं। जेने बाजार में बिक्री करीने किसान अपनी आय भी वधावी शके हैं। दूधनो उपयोग पनीर ने मक्खन जेवा उत्पाद बनाबा में भी काम आवे है। बकरियोना बच्चा भी बिक्री करीने नगदी प्राप्त करी लेवाए। आने अलावा बकरियोनी खाल थकी चमड़ा उत्पाद भी बनावी शको ने इने लीड थकी उत्कृष्ट खाद भी बने है, जे काफी महत्वपूर्ण कहवा है। किसान भाइयों, बकरी पालन थकी अन्य पशुपालन नी तुलना में कम लागत लागे है ने आ छोटा किसान भी आसानी थकी काम करी शके। आ किसानों हरू साल भर आयना एक स्थिर स्रोत प्रदान करे हैं, जेने थकी इननी आजीविका भी सुरक्षित था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बकरी पालन महत्वपूर्ण योगदान आले है। किसान भाइयों, आ प्रत्यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप थकी रोजगार ना अवसर भी प्रदान करे है। बकरियों की विभिन्न प्रजातियां आवे हैं, जे आपड़े क्षेत्र अनुसार काम आवे ई आप आसानी थकी राखी शको। बकरी ना गोबर ने लेडी भी कहे हैं, जे के खातना रूप में अधिक उपयोगी रहे। बकरिया सड़ती वेरा बंजर भूमि में अगर लेडी करीने आले तो इन्हें उपजाऊ बनाबानी क्षमता भी राखे हैं। बकरिया ने भविष्यना पशु भी कहे हैं। बकरीना उपोत्पादों थकी प्राप्त औषधीय ने जैव रसायन भी घना उपयोगी हैं। किसान भाइयों, देश में बकरियों ने दूध, मांस ने अन्य उत्पाद हरू उपयोग में लावे हैं। आना में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होवाने कारण आननी उपयोगिता सिद्ध थई रही थकी है। किसान भाइयों, बकरियों थकी देशनी अर्थव्यवस्था में हुदार हारू काफी योगदान है। जिम के बकरियों थकी अपने एक तो दूध उत्पादन मल है ने आने थकी थावा वारा जे व्यंजन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें अलावा किसान भाइयों, बकरी थकी प्राप्त जे मांस उत्पाद है ये भी अर्थव्यवस्था हुदारवा में काफी योगदान आल है। बकरियों थकी प्राप्त जे ऊन है ये भी अर्थव्यवस्था में हुदार तो आलीरू है ने इन्हें हाथे हाथे चमड़ा उत्पादन है ये भी खूब महत्वपूर्ण आपरो काम राखे है। खास करीने बात करो किसान भाइयों, तो बकरी थकी खाद ने अन्य वस्तुएं जी भी प्राप्त थाए हैं ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान आलेरी है। तो किसान भाइयों, आज आप बात करिए बकरी थकी अधिक आय लई सके किसान भाई। आज खेती री बात कार्यक्रम नो टेम पूरो थई रह्यो तो वालजी भाई ने आज्ञा लो काले सोरा ऊपर फिरी नवी जानकारी नाते मलंगा। ए आवजू, राम राम, राम राम।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती नी बात, जो यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत। कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत में आज आपको सुनवाते हैं जीवा भगत और साथियों की आवाज में वागड़ी लोकगीत।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ,
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय दे रहे

देखते हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम बागड़ी लोक संगीत। बागड़ी लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे जीवा भाई और साथियों की आवाज में कार्यक्रम बागड़ी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत सुनवाते हैं वार्ता, और वार्ता का विषय है रक्षाबंधन, और वार्ताकार हैं निशा राठौड़।
1: बधाई हो बधाई, राखी है आई, प्रेम की डोर से बंधी है कलाई। माच एक रेशम का धागा नहीं यह, इसमें है बहनों की भाई को दुहाई। जी हाँ, आज रक्षाबंधन है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भाई बहन के प्यार के साथ साथ यह गुरु शिष्य परंपरा का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इसकी कई कथाएं प्रचलित हैं। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानव में जब युद्ध हुआ, तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बेटी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन

रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में उस धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में भी रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि उन्हें दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गईं। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और बदले में विष्णु जी को साथ ले आईं। संयोग से उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। एक कथा के अनुसार श्रावण मास में ऋषिगण आश्रम में रहकर अध्ययन और यज्ञ करते थे। यज्ञ की समाप्ति पर यजमानों और शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी, इसीलिए इसका नाम रक्षाबंधन प्रचलित हुआ। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ब्राह्मण आज भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसी रक्षा सूत्र को राखी कहा जाने लगा। कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए ब्राह्मण निम्न मंत्र का उच्चारण करते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबच्छामि रक्षे मा चलो मा चलो। अर्थात रक्षा के जिस साधन से अति बलि राक्षस बलि को बांधा गया था उसी को मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तू भी अपने कर्तव्य से न डिगना, अर्थात सब प्रकार से इसकी रक्षा करना। इस श्लोक में रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा सेना की रक्षा के लिए रक्षाबंधन की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई, तब द्रौपदी ने लहू को रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांधी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब उनकी लाज बचाकर श्री कृष्ण ने यह कर्ज चुकाया था। इतिहास में राखी के कई महत्वपूर्ण उल्लेख हैं। मेवाड़ की महारानी कर्मावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली थी तब रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। कहते हैं सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पूर्वास को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था और युद्ध में सिकंदर को ही मारने का वचन लिया था। पूर्वास ने हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए गए वचन का मान रखते हुए युद्ध में सिकंदर को जीवन दान दिया था। रक्षाबंधन पारिवारिक और सामाजिक एक पद्धता या एक सूत्रता का उपाय रहा है। यह पर्व हिंदुओं में प्रचलित है पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग उत्साह और उमंग से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है और हो भी क्यों न, यही तो एक ऐसा दिन है जो विशेषकर भाई बहनों के लिए बना है। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी बांधने का रिवाज है। चूड़ा राखी को लुम्बा भी कहते हैं। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर पीले छीटों वाला फुंदना लगा होता है।

0: यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है, जबकि चूड़ा राखी भाभी की चूड़ियों में बांधी जाती है। राखी कच्चे सूत से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोना चांदी जैसी महंगी वस्तु की भी होती है। यूं तो भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से यह दिन इतना महत्वपूर्ण हुआ है। बरसों से चला आ रहा यह त्योहार आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का ही कार्यकलाप नहीं रह गया, राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा व हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाने लगी है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है। वहां छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। आजकल राखी प्रमुख रूप से भाई बहन का पर्व ही माना जाता है। बहनों को बड़ी उत्सुकता से इस पर्व का इंतजार रहता है। इस अवसर पर विवाहित बहनें ससुराल से मायके जाती हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का आयोजन रखती हैं। बड़ा ही आत्मीयता और भावना से भरा होता है वह समय जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार देता है। परिवार में खुशी का माहौल होता है। घर के सभी बड़े बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। हर बहना करती है ईश्वर से दुआ, भाई को मिले जिंदगी खुशनुमा, कभी न हो उसके माथे पर लकीरें, जीवन की हो सदा सुंदर तस्वीरें। भाई भी अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी की दुआ करते हैं। हे प्रभु, मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलों भरा सदा मेरी बहना का घर रहे। आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत से भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं और उनके परिवार वाले भारत या अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद कई सारी ई कॉमर्स साइट खुल गई हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर राखी दिए गए पते पर पहुंचाती हैं। आज रक्षाबंधन पारिवारिक मेल मिलाप बढ़ाने वाला त्योहार है। इस अवसर पर बहनें मायके आ जाती हैं, उनके मन में बचपन की यादें सजीव हो जाती हैं, क्योंकि भाई बहन को रक्षा का वचन देते हैं। इससे पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है। लोग पिछली कड़वाहट को भूलकर आपसी प्रेम को महत्व देने लगते हैं। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य करता है। संसार भर में यह एक अनूठा पर्व है। इस समय देश की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। राखी का त्योहार आप सबके जीवन में अत्यंत खुशियां लाए और रेशम की ये नाजुक डोर आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाए, यही शुभकामना।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था रक्षाबंधन और वार्ताकार थी निशा राठौड़। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 7:30 होने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। कार्यक्रम हम है राही प्यार की। आइए आपको सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की बधाइयों के साथ सुनवा रहे हैं पहला गीत। बेईमान फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

होशियार फिल्म से आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अगला गीत इंदिवर के बोल, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: अरे सुनो,
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर? किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। रात और दिन इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन।

0: और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: संदेशों से पहले आपने गीत सुना मेरे हुजूर, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब झुक गया आसमान इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है।

0: के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल

0: फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
3: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
5: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
4: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश

0: सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रूपये प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह सवेरे के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है दिली जज्बातों के कार्यक्रम कुछ दिल से का।

कार्यक्रम को दिल से के सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो हो शबाना परवीन का प्यार भरा आदाब और नमस्कार। रंग बिरंगी राखियां लेकर खुशियों से भर जाए आंगन, भाई बहन का प्यारा बंधन महके जैसे सावन भादों का सावन। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ धागा नहीं है, है वादा अनोखा। संग रहेंगे हर सुख दुख में, ना होगा कभी रिश्ता धोखा। बहना की आंखों में सपने, भाई के दिल में जिम्मेदारी। रक्षाबंधन का ये पावन दिन लाए सदा मुस्कान प्यारी।

श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के उस खूबसूरत रिश्ते की जो सिर्फ एक धागे के नाम से जीवन भर बंधा रहता है और उस धागे में बंधती है एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं, एक दूसरे के लिए हिफाजत, सहयोग और साथ देने का वादा और जिम्मेदारी। जी हाँ, ये प्यारा और खूबसूरत रिश्ता जो भाई बहन के बीच होता है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोतों, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह और प्यार की डोर से बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे हम सब राखी कहते हैं। सावन महीने के मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सावनी या सलोनु भी कहते हैं। रक्षाबंधन में इस राखी का बहुत महत्व है। राखी कच्चे सूत के धागे से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने चांदी की भी हो सकती है।

श्रोताओं, रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बांधने वाला एक धागा नहीं है। इसके पीछे भाई बहन के प्रेम और विश्वास से लेकर कई पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग और देश के अलग अलग हिस्सों की परंपराएं जुड़ी हैं। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। इसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून रुक सके, और प्रचलित मान्यता में इस कपड़े के टुकड़े को राखी के पवित्र धागे और रक्षा के भाव से जोड़कर देखा जाने लगा।

रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रचलित ऐतिहासिक कथा सिकंदर की पत्नी और हिंदू शासक राजा पुरुष से जुड़ी है। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था। बाद में सिकंदर और राजा पुरु के बीच में युद्ध हुआ। प्रचलित कथा के अनुसार युद्ध के दौरान राजा पुरु ने राखी के रिश्ते और अपनी बहन से किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। वहीं रक्षाबंधन से जुड़ी मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से जुड़ी प्रचलित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है, जिसे हम सब बचपन से स्कूल की छोटी कक्षाओं में पढ़ते

रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग बंगाल विभाजन का है। जब ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन की योजना बना रही थी, तब प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में राखी का इस्तेमाल किया। टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने का आह्वान किया। इसके बाद ढाका, कोलकाता और चटगांव में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का संदेश दिया। इस तरह राखी का अर्थ केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे की भी प्रतीक बनी। राखियां बहनों की शुभ सौगात हैं, राखियां भाई को आशीर्वाद है। बांधते जब भाइयों के हाथों पर, बहनों को होता अनूठा नाज है। स्नेह के अनसुने सुरीले गीतों पर राखी बजदा अलंकृत साज है। राखियों में झलकती अद्भुत खुशी, राखियां घेवर का अनुपम स्वाद है।

इसी के साथ दीजिए रेडियो शबाना परवीन को इजाजत, कार्यक्रम को जिलसे को यहीं संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात किसी और नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपनों के साथ बने रहिए।

श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से दिली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से, जो यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। डीजे आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपको सुनवाते हैं सुप्रिया की आवाज में राजस्थानी लोकगीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आपको सुनवा रहे थे सुप्रिया की आवाज में कुछ राजस्थानी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 9 बजने को हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिन्दी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की हॉलमार्किंग व्यवस्था का देश भर के 102 जिलों में विस्तार किया। 25,000 से अधिक कारोबारी पंजीकृत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की। देश प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर हर्षोल्लास। बाड़मेर में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले की शुरुआत आज से। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मेले में भाग लेने के लिए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर के 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित चांदी के हॉल मार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। ब्यूरो त्योहारी सीजन में 25,000 से ज्यादा चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल 1 सितंबर को HUID पोर्टल शुरू हुआ था। इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर HUID के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी है। हॉलमार्किंग प्रणाली के तहत 6 अंकों वाला HUID चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की गुणवत्ता तय करता है। नेपाल में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नेपाल में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग नेपाल के हालात, मौसम और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहा है। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों और उनके परिजनों से इस दौरान सहयोग की अपील की है। फर्जी और बैकडेटेड BPA डिग्री मामले में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश के

0: सीहोर स्थित श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एंड मेडिकल साइंसेज के कुलपति मुकेश तिवारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें परीक्षा नियंत्रक संजय राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा शामिल हैं। एसओजी के अनुसार मामला शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है। जांच में एक अभ्यर्थी द्वारा फर्जी बीपीएड डिग्री के आधार पर परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा की पड़ताल में फीस संबंधी अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं मिली। वहीं शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री प्रस्तुत करने वाले 66 अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में आए हैं। एसओजी के महानिरीक्षक अजय पाल लांबा ने बताया कि एसओजी द्वारा इनके दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
1: ये विश्वविद्यालय था सत्यसाई यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों की ये यूनिवर्सिटी है सीहोर मध्य प्रदेश में। उसकी ये डिग्री उसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दी गई, जिससे प्राइमा फेसाई ये जाहिर हुआ कि जब कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय डिग्री किसी अन्य विश्वविद्यालय की थी, तो सिलेक्शन के समय अन्य विश्वविद्यालय की लेके आया का मतलब ये कहीं कोई डिग्री में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके पश्चात उन दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये तथ्य सामने आया, अनेक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा एडमिशन लेने की डेट कुछ और है, फीस जमा कराने की डेट कुछ और है और डिग्री प्राप्त करने की डेट कुछ और है।
0: प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। राज्य में जनवरी से अब तक इन्फ्लुएंजा H1N1 के 146 मामले सामने आए हैं। इनमें अगस्त में सबसे अधिक 55 मामले दर्ज किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि विभाग की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि वर्तमान में H1N1 के किसी नए अधिक घातक स्ट्रेन के प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आमजन से सावधानी बरतने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा नहीं लेने की सलाह भी दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा और मदद करने का वादा कर उपहार दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का उल्लास है। कई स्थानों पर विविध और अनूठे अंदाज में राखी मनाई जा रही है। बाड़मेर में कई जगह पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। पाली में पुलिस की ओर से रक्षा का वचन अभियान के तहत कल कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन सहित पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। हनुमानगढ़ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले कल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 144 किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाकर स्वास्थ्य सुरक्षा का उपहार दिया गया। रक्षाबंधन के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से आज और कल महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। वहीं त्योहार के लिए जयपुर से बयाना तक चलने वाली यात्री गाड़ी को भरतपुर तक चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। भादरा तहसील स्थित गोगा मेड़ी में एक महीने तक भरने वाले इस मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस

0: की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक माह तक चलने वाले इस धार्मिक महाकुंभ में श्रद्धालु नाच गाकर मेले का आनंद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला परिसर और बैरिकेडिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: इस बीच हनुमानगढ़ के टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह में 10 सितंबर से सालाना जोड़ मेला शुरू होगा। मेले को लेकर गुरुद्वारा साहिब में तैयारियां की जा रही हैं। गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार बाबा योगा सिंह ने बताया कि मेले में एक दिन पहले 9 सितंबर को खुले दीवान सजाए जाएंगे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनरल धीरज सेठ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा से भी मुलाकात की। दोनों अधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और संवेदनशील परिस्थितियों में सेना तथा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की हॉलमार्किंग व्यवस्था का देश भर के 102 जिलों में विस्तार किया। 25,000 से अधिक कारोबारी पंजीकृत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की। देश प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर हर्षोल्लास। बाड़मेर में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। और प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले की शुरुआत आज से। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवाते हैं चंदन दास की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ,
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे थे चंदन दास की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सीआईईटी एनसीईआरटी के रेडियो प्रसारण उमंग में आपको वंदना
3: और अजीत का
2: नमस्कार।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेडियो की कहानी। जी हाँ, उसी रेडियो की कहानी जिस पर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।
2: उस रेडियो की कहानी जिसे लोग पहले जादू का डिब्बा कहते थे।
3: वंदना, मुझे अपना बचपन याद आता है।
2: बचपन?
3: बचपन में मुझे बताया गया था कि रेडियो के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं जो अंदर बैठकर बोलते हैं या गाते बजाते हैं। मैं अक्सर रेडियो के पास जाकर उन्हें देखने की कोशिश करता था कि वे लोग हैं कौन।
2: जी, आप भी कमाल करते हैं। और फिर वो कितने छोटे होते, आपने भी कुछ सोचा भी नहीं। यहाँ तो चुंबकीय तरंगों का कमाल है।
3: तो क्यों ना आज का कार्यक्रम सुना जाए।
2: क्यों नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है ये कार्यक्रम
3: रेडियो की कहानी।
2: रेडियो की कहानी।
4: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
5: और मैं सुचित्रा हूँ।
4: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
5: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
4: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से।

0: जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
1: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
0: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
2: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
3: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
2: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
3: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
3: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
3: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
1: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया।
0: अपनी सफल असफल कोशिशों, सहज बुद्धि और अपने अदम्य साहस पर विश्वास के बलबूते ही वो ये करिश्मा दिखा पाया।
1: ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे ऐसे
5: जोर से मारना।
4: सैम है ना? अरे इधर तू आओ।
6: हाँ हाँ आते हैं।
4: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
4: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।
3: अच्छा।
4: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
5: हाँ,
4: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
3: अच्छा।
4: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
4: फिर जाओ ना।
6: पहुँच गए।
4: हाँ हाँ।

0: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
1: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
2: अरे वाह, अरे वाह,
1: क्या बात है,
2: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह
3: क्या बात है,
2: अरे वाह।
0: सिग्नल मिला?
2: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत, शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
0: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
4: ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उसके प्रयोगों ने इस बात को साबित किया कि विश्व में कहीं भी एक लंबी दूरी तक बेतार के संचार माध्यम काम कर सकते हैं।
0: सन 1896 में मार्कोनी के आविष्कार वायरलेस टेलीग्राफी को पेटेंट की मान्यता मिल गई। पेटेंट का मतलब एक ऐसी नामांकित यानी रजिस्टर्ड संख्या से है जो नए आविष्कारों और खोजों को दी जाती है।
4: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
0: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़े कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: ये क्या? ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: वाह, रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है।
0: पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
3: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
2: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
3: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
2: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्यों हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
4: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैम की ओर भागो।
5: ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
0: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है। हेड पर कितनी बड़ी कटान पड़ती है। अरे बचाओ, अरे पानी मत छोड़ो। जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेल्प।
6: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। सेव टाइटैनिक,
6: निकलो।
0: शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइफ सेवर भेजो। सेंड जनरल कॉल डिस्पैच।
6: जल्दी जल्दी करो।
0: जीव रक्षक नावों को नीचे उतारो। लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
7: सर सर, मैसेज मिला है कि कुछ जहाज बचाव के लिए आ रहे हैं।
0: कुछ

0: It has been a privilege playing with you tonight.
1: क्या आपको पता है टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मोर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
2: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
1: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हैरल्ड राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है। इसके कारण ही 2207 में से 705 जहाज यात्रियों को महासागर में मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया जा सका।
0: यानी जिन लोगों को बचाया जा सका उसका पूरा श्रेय केवल एक व्यक्ति श्री मार्कोनी और उनके अद्भुत आविष्कार को जाता है।
1: साथियों, रेडियो की यात्रा जारी रही। समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता और प्रभाव बढ़ते ही गए।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे न कोई वैज्ञानिक थे और न ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You're really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार के ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
3: मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
7: जी, मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
3: गुड गुड।
7: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
3: Come on, come on.

0: जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है। रेडियो का आकर्षण कभी खोया नहीं। इसका मोह लोगों में फिर से जाग उठा है।

रेडियो की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं मूल आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुवाद डॉक्टर शारदा कुमारी, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, शरद तिवारी, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा, कीमती आनंद, राजेश आहुजा, आकाश रसज्ञ और हन्ना। तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: हाँ दोस्तों, रेडियो का सफर अब भी जारी है
1: और जारी रहेगा। इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आई।
0: ये तो है।
1: इतना जरूर है कि इसने अब अपना रूप बड़ी खूबसूरती से बदला है। आज इसने बहुत से सामाजिक सरोकारों से खुद को जोड़ लिया है और पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है।
0: बिल्कुल ठीक है अजीत। अब देखो, आज

0: है।
1: हाँ ये तो है।
0: हाँ, और लोग रेडियो के माध्यम से ही सारी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर पाते हैं।
1: हाँ वंदना, एक बात और, आज सभी बड़े शहरों में लोग वाहन चलाते हुए एफएम सुनते हैं।
0: हाँ, ये है, तो है।
1: ट्रैफिक का हाल तुरंत मालूम हो जाता है। आजकल रेडियो फोन इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को बेहतर परामर्श देता है।
0: हाँ ये तो है।
1: अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी इन कार्यक्रमों में घर बैठे भाग ले सकते हैं। आज रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम भी उपलब्ध है, जैसा कि इस समय आप सुन रहे हैं।
0: हाँ, ये तो है। हाँ अजीत, आजकल सामुदायिक रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो का चलन भी बहुत बढ़ गया है, जिसके द्वारा एक विशेष मानव समूह यानी स्पेसिफिक ह्यूमन कम्युनिटी उनकी उनको ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकता के अनुसार से कार्यक्रम बनाए जाते हैं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी बात है कि एक विशेष मानव समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रेडियो आज भी समाचारों और संगीत को सुनने का पसंदीदा माध्यम है।
0: हाँ ये तो है।
1: अभी ये माध्यम और आगे बढ़ेगा सामाजिक समन्वय की दिशा में।
0: हाँ, हमें पूरी आशा है।
1: तो श्रोताओं, रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, तो आइए अब सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि की संगीतमय प्रस्तुति। और ये कविता कहती है,
0: अभी न होगा मेरा अंत।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जो यहीं संपन्न हुआ। प्रातः के 10 बजने को हैं, आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अभी न होगा मेरा अंत।
1: निर्माण ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन।
2: तो साथियों, सुना आपने कार्यक्रम। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
3: अब हमारे रेडियो प्रसारण का समय समाप्त होता है और इसीलिए अजीत और
0: वंदना
3: आपसे इस समय अपने स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट बटी लैंगलिंगो जी के साथ आज्ञा चाहते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्दीक हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए डिटेल में।
1: जी मैम DHL के जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग, रेलवे का काम होता है DHL से आता है तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे ना?
1: जी
0: बढ़िया। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ता
0: कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे इसलिए।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाजें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफा जी बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कि बहुत कम ग्राहक आते हैं कि किसी को दवाई का शासन नहीं हुआ या शिकायत की हो।
0: आजकल
1: दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह क्या बात है। लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप, इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के खरीदें कि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन ही करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
0: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो। तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
1: जी हाँ, हालांकि कई मेडिकल स्टोर्स पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल आया अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं। तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं, तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई

0: तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
1: जी जी मुस्तफा जी, हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है, इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: फर्क तो इतना रहता है मैम कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है बहुत सारे लोगों को मिल जाती है और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई एमआर वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके एमआर वगैरह आके मिल जाते हैं।
1: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें।
0: मैम एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी बीवी नंबर वन, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम बीवी नंबर वन।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है बाज बहादुर, और क्या है वहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो इधर मांडो पे है।
0: मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को, कैसे जाया जाता है और क्या है वहाँ पर?
1: मांडो इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है इंदौर के आसपास।

0: महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है
1: जी जी, देवास भी है, है ना?
0: देवास भी है, तो ये सभी जगह मंदिर हैं।
1: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है।
0: मांडो पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
1: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
0: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
1: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा?
0: हाँ, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड भी है, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD वैसे ही खरीदते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
0: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल वगैरह से। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
1: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके बाद अब आराम का समय।
0: आपका विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं,
1: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे। तो इसमें
0: हाँ, गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता हूँ।
1: तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
0: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
1: जी जी,
0: तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरबा हुए।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूमि, असम से।
0: अच्छा,
1: मैं ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली
0: जी।
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम
0: जी। जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं है हमारी। जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं, है ना।
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियाँ आपने खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, मैं इमिटेट किया है
0: जी।
1: सब अच्छा लगता है शायरी तो
0: जी,
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी
1: जी,
0: असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी? असम में सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर टू पार्ट है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है। हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुमाके भालोबासी, वो बोलते हैं मोय तुमको, ऐसे करके क्या बोले उसका जो लेंगे।
0: और बच्चे को शुवाली
1: शुवाली जी जी जी आपने सही पकड़े हैं। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, जायकेदार चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है
0: जी जी।
1: तो ममता जी, आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहते
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे पंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से?
1: हाँ, सरकार से पेंशन मिल रही है और
0: हाँ
1: सब चीजें मिल रही है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया
0: अच्छा,
1: मैं। अब
0: ओ
1: उनके बच्चों को
0: हाँ
1: बढ़ता हुआ
0: हाँ
1: देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही थी, यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा
0: ओ,
1: होता।
0: देखिए ना, जब हम टीसी ग्रुप को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को छोड़कर इतनी बीहड़, इतनी तकलीफदेह यात्रा भी करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए बर्थ होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है, आप बैठ के यात्रा करते हैं, एक छोटी सी सीट होती है, देखा है। तो अब यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर?
1: हाँ,
0: आपकी बहन की राखी
1: मेरी
0: आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई
1: हाँ
0: कुछ?
1: वो तो, अब मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
0: अच्छा जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन को, और अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो चलिए बताइए अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंधा

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था
0: जी। बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: जी बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल के बाद लगा है।
0: जी बिल्कुल, एक बार क्या इसके पहले बात हुई थी पर भी कई महीने पहले, तो बताइए क्या हाल है अब भोपाल का, क्या हाल है भोपाल में, क्या गतिविधियाँ चल रही है आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे भोपाल में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई समय से आ गई।
0: जी तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है, मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है बस बंद हो जाती है। हमने सुना है प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है।
1: हाँ जी जी, पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी जी जी,
1: और मेरी बहने, तीन बहने गई हैं तीर्थ यात्रा पे।
0: अच्छा, तो राखी कैसे बांधेंगी 28 तारीख को, रक्षाबंधन?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में।
0: जी जी जी,
1: और वहाँ से कल सभी बहने हमारी गांव पे आ जाएंगी, हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहाँ सब बहने आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा।
0: अच्छा,
1: फिर हम 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे बहनों के, उनका स्वागत करना रहता है।
0: क्या बात
1: जब
0: है,
1: कोई हमारे यहाँ तीर्थ जाते हैं तो उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह,
1: कहा ये जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं,
0: अच्छा,
1: फिर उनको घर लेके जाते हैं। जी
0: वाह वाह, तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो गया, आप जाएंगे और उसके बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है तो राखी भी बन जाएगी फिर तो।
1: जी जी जी,
0: तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई हैं, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों
0: जी।
1: को, पसंद जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया, और बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज, मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों ईद मिलन करके गाँव चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
0: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं, तो आपने क्या देखा बताइए आप?
1: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहाँ पे मैं देखने के लिए गया था।
0: हाँ,
1: और
0: श्रवण सिंह गिन्नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की, तो श्रवण जी आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है, तो जब भी जंगल में जाएं या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़ें तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह गिन्नारे जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना, फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: विशाल यादव
0: जी। विशाल जी बताइए, कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, जो क्लासिक रहती है और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया है
0: जी। तो लग गया है फोन?
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन बार में देश गान आता है, रामचरित मानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूले मिश्र गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी, जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बिल्कुल। ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन है ये भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं। जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है, और धर्म का भाई भी ना प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है, ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी जी,
1: हमारे राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है, और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यहाँ पत्रों का शहर बनी है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर बनी है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र गिरी है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है, तो आज भी मेहमानों के राव में फूल बिकाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है, और बहुत अच्छा
1: नंबर वन।
0: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
1: सेवाया बनाते हैं, और बहने आती है, राखी बांधते हैं, और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मल्ल जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
0: जी जी,
1: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो जैसे उनकी लड़ी हुई कर्मावती ने राखी भेजी थी।
0: जी जी, और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
1: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते हैं, ऐसी भी परंपरा में।
0: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन तो।
1: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता।

0: ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात सिरों में भी प्यार नहीं होता।
1: जी क्या बात है भाई। और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना।
0: हाँ जी मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, कि मेरी बहन का गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी कहना है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज में, देवानंद सिन्हा का गाना है।
1: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्ण।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बिटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं
1: जी,
0: तो पत्र भी लिखते हैं
1: जी? अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम हैं।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को, भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया, नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं, मैं तो लिखता हूँ
0: जी। बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना

0: नहीं चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ, खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही समय
1: थी। बाद में शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था,
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता था।
1: मैंने तो लगभग संजोए रखा हुआ है, वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खतों के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी, तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
1: जी परमानंद जी बताइए क्या हाल है आपका।
0: बड़ी काम कर मरका
1: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पिक्चर का नाम हिमालय की गोद में और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
1: जी मुकेश की आवाज में ये गाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसुरा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रातः 11:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर। पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म क्या कहना से, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में। गीत में बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी की और धुन है राजेश रोशन की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म क्या कहना से कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म एक रिश्ता से। आवाज है कुमार शानू, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और सारिका की। गीत में बोल हैं समीर के और धुन है नदीम श्रवण की।

फिल्म एक रिश्ता से आप ये गीत सुन रहे थे। आवाज थी कुमार शानू, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और सारिका की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अपने से। आवाज सोनू निगम और जयश गांधी की। गीत में बोल हैं समीर के और धुन है हिमेश रेशमिया की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म अपने से सोनू निगम और जयश गांधी की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत में आवाज और संगीत है हिमेश रेशमिया की। फिल्म है प्रेम रतन धन पायो।

10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. 2, 1, let's start the fun!

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन से। आवाज थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत में बोल थे रविन्द्र रावल के और संगीत था राम लक्ष्मण का। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना पांडुरंग दीक्षित की।

रिश्ता कागज का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: कौन है जी?
3: ये कौन है?
1: कौन?
4: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को सुरों में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आरडी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सफर में आपके साथ है पूजा नरानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन तो हम ही करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा काम आप सभी करते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए कार्यक्रम के गीतों की झलक साझा करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों यानी इबारत से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे साथ ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं आज की इबारत जो आपने फेसबुक पेज पर पढ़ ली है, लेकिन कुछ श्रोताओं के लिए इसे पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। रूह और सरगोशी, एक अनकहा संवाद, आज ये हमारी इबारत में शामिल है। रूह कहती है कि क्यों आज फिर इतना दीवाना सौदाई सा मन है, कितनी वर्षों की तन्हाई लेकर बैठा है यह दिल, काश कोई राह ही मिल जाए, कोई आहट आ जाए तो शायद मन थोड़ा बहल जाए। सरगोशी कहती है, देखो सामने काली घटा के साए उतर आए हैं, शायद इन्हीं पर लिखना है कोई अफसाना अधूरा सा, जिसमें छुपा हो मेरी आहों का धुआं और उन आहों में किसी के लौट आने की उम्मीद। तो रूह कहती है कि कभी सोचा था मोहब्बत में इतना कुछ मिलेगा, पर जो मिला उसके बदले में प्यार के प्यार दिया है। अब बताओ किसी टूटे हुए मन का सहारा कैसे बनूं, जब खुद ही किसी सहारे की तलाश में हूं। सरगोशी कहती है, आंखें बंद करो, शायद दूर कहीं सूरत मीरा मोहन की सी कोई छवि ठहरी हो, उस एक पल की रोशनी से तकदीर रोशन हो जाए तो फिर किस बात की शिकायत। रूह कहती है, लेकिन ये मन भी अजीब है ना, कभी पुरवैया बांध चलाए, कभी मन को अपनी दिल पसंद पनाहों में छुपा ले और कभी पलकों की पखियां बनकर किसी अनकहे सपने को सहलाने लगी। सरगोशी कहने लगी, शायद इंतजार की यही तो सजा है, जब आंखें तरस गई हैं तो हर आहट किसी अपने की लगती है, हर स्पर्श में एक सवाल उठता है और उंगलियां किसके प्यार की है छूती और दिल चुपचाप उस जवाब को सुनने लगता है।

जी हाँ श्रोताओ, अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। रक्षाबंधन पर्व है, इसलिए इस गीत से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोता गण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतजार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उसे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का

पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और साथ ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सात्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है, जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल हैं, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है, वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत। आज जी ये हमारी श्रोता कह रही। हमारे अगली श्रोता कह रही है कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतजार करती है और यही इंतजार कभी अकेला नहीं छोड़ता। छोटा लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है। और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगले

0: पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारी एक श्रोता कहती है कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि साले की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघाटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार प्यार मोहब्बत तन्हाई बेचैनी किसी के आने की आहट मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही हैं इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है।

बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवान, छा गया चारों तरफ

मैंने पूछा जो पता वो भी टकरा के गई और बेचैन किया।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन ने। हमारे श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की स्पंदित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफुसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कने एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है। तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहां सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है। अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं।

साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोशीला से, बताइए किसने गाया है। पर्दे पर भी किसने गाया है ये भी जरूर बताएं।

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आर जी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत

को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमीन को गले लगाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा की झोंकी बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आफी बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं। सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

एक श्रोता कह रही है कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता है जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्योहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार है। एक श्रोता कह रही है कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी। त्योहार पर सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्योहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजनू सुल्तानपुरी की बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा लिए, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ।

कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है। पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात आज रक्षाबंधन की मिठाइयां मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही है, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है, तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही है, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। यहाँ आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है। इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीजा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही है कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है जब मन और रूह की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविन्द्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविन्द्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविन्द्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविन्द्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविन्द्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविन्द्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविन्द्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट कल्पना रविन्द्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविन्द्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
0: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
1: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई।

अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही।

0: उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविन्द्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
1: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और ये संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
0: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए, इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृति नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर, और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जन

0: धन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि हाथ के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केन्द्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायर उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुन

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भरे।
1: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली परी हारी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास की बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बताते हैं, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहां पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं। और आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं?
1: हाँ जी।
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं या पति हैं?
1: हाँ जी, पति है हमारा, दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी मेरा साया फिल्म का।
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी, मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: जिला हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैम, हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: सबसे ज्यादा मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला आपकी पसंद का काम, जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब।
0: ये सब सर बारिश के पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी, नागपंचमी 17 तारीख को, तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ, करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं, आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं दिया माँ मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। मैं
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहां घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से। तुझे ना

0: और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
0: कृष्णा सिंह, कृष्णा जी आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल चलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम।
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना,
0: रोग फिल्म का। खूबसूरत है वो इतना
1: जी मैम,
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है, तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड

0: गुजर गए मैम।
1: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
0: जी मैम।
1: तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: मैम रिमझिम बरसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
1: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
0: जी मैम।
1: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी, नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम।
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
0: हाँ जी, सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम।
0: जी
1: मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम।
0: अच्छा।
1: मैं बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम, और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से।
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम।
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोक गीत
1: जी मैम।

हरे राम सावन बीता जाए सजन नहीं आए रे हरे। जी मैम, मैंने

0: यही गाया था
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: हाँ दीदी।
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउसवाइफ हूँ दीदी
0: जी,
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी होगी ना, कामकाजी महिला भी होगी, घर के काम के साथ साथ आपकी दुकान भी संभालती हैं।
1: जी।
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो घर में है दीदी, तो

0: दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
1: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में। अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
0: दीदी मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
1: सेहतनामा अच्छा लगता है?
0: जी जी जी
1: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
0: जी जी जी
1: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
1: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
0: इसे समझो नारेशम की दौर मैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
1: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मढ़िया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं धनेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ
0: जी।
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं, अपने बारे में बताइए
1: हाँ,
0: हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे
1: जी
0: शहरों
1: जी
0: में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ।

0: और दानापुर में रही हूँ, अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
1: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं?
0: जी जी जी, जैसे रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
1: अच्छा, और इतने सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
0: अच्छा तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था, चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगा था।
1: और आपके क्या क्या शौक हैं?
0: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है।
1: हाँ?
0: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से, सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाले घर जाना है करके।
1: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
0: मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है वेलफेयर से भी होता है ना
1: जी,
0: तो उसपे मैं कुकिंग करी थी तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
1: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
0: ए मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं
1: जी। आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का चाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार।
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: नासिक महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें प्लाजो भी होते हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं और भी कई तरह की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी बहन जी।
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सिर्फ तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: हाँ।
0: आपको सुनवा रहे हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहाँ से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी।
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और
0: जी?
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है
0: जी।
1: फिर 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे श्रोता अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: हाँ मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना,
0: जी
1: तो क्वेश्चन के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देती हूँ कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता है कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ जैसे कि मैं अपने पीआर से काफी दूर हूँ, मेरा पीआर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
0: तो जब
1: तो
0: राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पीआर तो, और रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहाँ पर जाना। तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदा रे भैया सुन के ना, भैया सुन के ना, बहना याद करे ओ चंदा रे।
0: भगवती जी आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SCD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670

0: 8888। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूँ। मतलब हद होती है भाई, पता है? एक तो मैं यहाँ पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूँ, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूँ। मुझे मालूम था यहाँ का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।
2: ये रातें ये

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

0: करा।
1: हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा, पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका, ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूँ, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूँ क्या? कहा था कि भाई आज नहीं, संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हाँ कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी हिम्मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ, पर अब और नहीं। मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं। और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही

देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूँ। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहाँ नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूँ, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था। क्यों है ना, नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिन भिनाते हुए

हाथ जोड़े। भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने

0: ऐसे कहें जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।
1: मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि

हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा। क्या

बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत झूठ सच असली नकली सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलट कर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते, और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं

उसकी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूँ। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूँ, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मूड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था।

मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात, उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी, बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो, तुम पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों एक साथ हंसे।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आ

आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है। एक

0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

आइए आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का समय रहेगा शाम 7:30 से। हमारे केंद्र से कार्यक्रम नारी लोग प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा चर्चा विषय रहेंगे विश्व संस्कृत दिवस, भाषाओं का रंगीन संसार, जब जी ललचाए पोषण न छूट जाए, रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार विषय पर प्रिया सक्सेना से बातचीत। इनसे बातचीत करेंगी तस्लीम कौसर और सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

हमारे केंद्र से कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत होंगे कामकाज की बातें, बातचीत, लोक भजन, बाजार भाव और मौसम की जानकारी और फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10 बजे से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर, यहीं से 6:10 पर होगी वंदना।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम खेती निवाद सुनिएगा 6:45 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को अपनी बहन तस्लीम कौसर का प्यार भरा नमस्कार और रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तोड़े से भी न टूटे ये ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। जी हां, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के बीच गहरे रिश्ते, उनके आपसी प्रेम और महत्व को दर्शाता है। तो आइए बहनों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार है रक्षाबंधन विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती प्रिया सक्सेना। तो सुनते हैं ये बातचीत। बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन को हम रक्षाबंधन के पावन पर्व के रूप में मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। बहनों, रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है रक्षा करने वाला बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांधती है और भाई भी ये प्रण लेते हैं कि वे अपनी बहन की आगे वक्त पड़ने पर अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं प्रिया जी सक्सेना। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रिया जी का। प्रिया जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रिया जी। सबसे पहले तो आप हमारी बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व के ऊपर प्रकाश डालिए कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या किया जाता है विषय पर।
1: रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो भाई बहन के प्यार और संबंध को मानता है। यह पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसका मतलब होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसके साथ भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है। राखी का यह परंपरागत आचरण भाई बहन के प्यार को और संबंध की महत्वपूर्णता को प्रकट करता है। रक्षाबंधन एक परिवार में खुशियों और एकता की भावना को भी बढ़ा देता है। यह दिन भाई बहन के बीच विशेष संबंध को मजबूती देता है और उनके प्यार को और भी गहराई देता है।

0: इसके साथ ही यह पर्व भाई बहन की आपसी समर्थन और साथीपन की महत्वपूर्णता को भी प्रकट करता है।
1: अब हमारी बहनों को प्रिया जी ये भी बताइए कि रक्षाबंधन पर घर में क्या क्या किया जाता है, इस पर्व को किस प्रकार मनाया जाता है।
0: इस दिन प्रातः स्नान आदि करके लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती है। थाली में राखी के साथ रोलिया, हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोलिया हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर फूलों को छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है और दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करके ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने का, विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है। यह पर्व भारतीय समाज में इतना व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही। धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्मों में भी इससे अछूते नहीं है। यह बहुत ही खास त्यौहार होता है। इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं और सभी रस्में भी पूरी करते हैं।
1: बिल्कुल। अब हमारी बहनों को आप थोड़ा ये भी बताइए कि इस दिन घर पर क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है, क्या क्या बनाया जाता है या क्या तैयारी घर पर की जाती है।
0: समारोह और खास त्योहारों पर त्योहारी व्यंजन इस दिन की और भी ज्यादा यादगार बनाते हैं। रक्षाबंधन के माध्यम से हम अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ समय बिता सकते हैं और उनके साथ खुशियां मना सकते हैं। समानता, समर्पण और प्यार की भावना से भरपूर यह पर्व हमें एक दूसरे के प्रति आदर्श संबंधों की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। इस त्योहार के माध्यम से हम भाई बहन के बंधन को मजबूती देने के साथ साथ परिवार के बंधनों की महत्वपूर्णता को भी समझते हैं।
1: प्रिया जी, जैसा कि ये सच भी है और कहा भी जाता है कि ये भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का बंधन है, तो हमारी बहनों को थोड़ी ये भी जानकारी दीजिए कि ये किस प्रकार भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का बंधन है।
0: ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्ते को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है, तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था, तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था, जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परंपरा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परंपरा एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं।

0: रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एक बंधन एक बद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी प्रिया जी आपने हमारी बहनों को दी कि किस प्रकार रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार और विश्वास का बंधन है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी और अवश्य ही वो उसको अपनाने की कोशिश करेंगे और आगे भी इसे अपने भाई बहन के रक्षा सूत्र के रूप में मनाती रहेंगी। और साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं प्रिया जी का कि वो उन्होंने हमारी बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी रक्षाबंधन के पर्व पर। धन्यवाद प्रिया जी।
0: धन्यवाद।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: बहनों, आपको एक बात और बता दें कि रक्षाबंधन के दिन ही विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को। बहनों, विश्व संस्कृत दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत पर केंद्रित है। इसमें भाषा के बारे में व्याख्यान शामिल है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुत्थान और संरक्षण को बढ़ावा देना है। बहनों, यह श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो हिंदू पंचांग के अगस्त महीने के साथ मेल खाता है। संस्कृत संगठन इस दिवस को बढ़ावा देने में शामिल है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने के निर्देश जारी किए, तब से संस्कृत दिवस को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक संगोष्ठी, छात्रों के द्वारा भाषण और श्लोकों के पाठों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिसके माध्यम से संस्कृत के छात्रों, कवियों और लेखकों को एक उचित मंच मिलता है और वे अपना भरपूर प्रदर्शन भी कर पाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का और भी अधिक प्रयास करते हैं। बहनों, श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन को ऋषियों के स्मरण और उनकी भक्ति के सम्मान का पर्व माना जाता है। इस दिन गुरुकुलों में वेदों के अध्ययन से पहले यज्ञोपवीत यानी पवित्र धागा पहनाया जाता है और इस समारोह को उपनयन या उपकर्म संस्कार भी कहा जाता है। तो ये तो थी चर्चा बहनों विश्व संस्कृत दिवस पर, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
6: पुलिस?
7: मिस सीमा
6: जी,
7: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
7: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
7: एक लाख दो

0: चाहोगे?
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: और आइए बहनों, फिर से रुक करते हैं चर्चा का। विषय है, जब जी ललचाए पोषण न छूट जाए। बहनों, जब जी ललचाए पोषण न छूट जाए, एक बेहद ही खूबसूरत और विचारणीय पंक्ति है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब हमारा मन किसी काम, अपने शौक और मोबाइल या व्यस्तता में पूरी तरह से लग जाता है, तब अक्सर हम अपने खान पान और सेहत यानी अपने पोषण को नजरअंदाज कर देते हैं। हम खाना तो कुछ खाते हैं, लेकिन खा कुछ और ही लेते हैं, ये सोचे समझे बिना कि शायद वो हमारे लिए पोषक है या नहीं, क्या वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है, शायद हम ये भी नहीं सोचते। दोनों मनपसंद काम करने के साथ साथ अपने शरीर का पोषण बनाए रखने हेतु हमें कुछ आसान तरीकों को अपनाना होगा, और बहुत ही आसानी से हम अपने दैनिक जीवन में उसे अपना भी सकते हैं। कुछ आदतों को स्मार्ट, जिनको हम कह सकते हैं, जो स्मार्ट आदतें हैं, उनको अपनाकर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ काम करके अपनी दैनिक जो अपनी कार्य क्षमता है उसे हम बदल सकते हैं। कुछ हेल्दी खाकर, जैसे कुछ हेल्दी स्नैक्स, जैसे कि मखाने, भुने हुए काजू, भुने हुए बादाम, यानी जिनको हम रोस्टेड कहते हैं, वो रोस्टेड आप चाहें तो लाग कर भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो काजू और बादाम को आप घर पर भी रोस्ट कर सकते हैं। उन्हें आप ऐसे स्थान पर रखें ताकि जब भी आपको कहीं पर अपने कार्यस्थल पर भूख लगे तो आप कुछ भी अनाप शनाप खाने से बच सके और कुछ हेल्दी फूड खाएं ताकि आपको नुकसानदायक ना हो। इसी के साथ बात करें कि काम में अगर हम ज्यादा डूब जाने के आदि हैं, अगर हम कुछ कार्य को करने लगे हैं तो हम ये तक भूल जाते हैं कि हमें पानी भी बीच बीच में पीना होता है। तो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कार्य करते समय, तो आप हर घंटे का एक रिमाइंडर अपने मोबाइल में सेट कर दें और जब भी वो रिमाइंडर बजे अवश्य ही आप पानी पीते रहें। बात करें बहनों की ओट्स हम और पोहा या स्प्राउट्स जैसे आसान रेसिपी को चुन सकते हैं, जो जल्दी बन भी जाती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली भी नहीं होती है और खाने में भी हमें हल्की रहती है। बहनों, काम चाहे जितना भी हो या करना जरूरी भी हो, अपने भोजन करने का समय हमेशा तय ही रखें। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको भूख लगे आप थोड़े थोड़े समय पर कुछ न कुछ खाते रहें, आप ऐसा ना करें। और जब भी आपको भरपूर भूख लगे तब खाने के सिवा आप कुछ भी कुछ ऐसी चीज खाकर अपनी भूख ना बिगाड़ें जिससे आपको समय लगने पर भूख ना लगे। बहनों, बात करें, फल खाना कभी ना भूलें। कई बार हम फूलों को अपने खाने के चीजों में ऐड नहीं करते हैं, तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी आपके मौसमी फल है, जैसे सेब, केला या संतरा जैसे फल, बिना किसी झंझट के भी आप उसे खा सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर। बहनों, बात करें कि काम में मन लगाना बहुत ही अच्छी बात है, कार्य करना भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ शरीर के बिना हर सफलता अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जब भी आपका जी ललचाए कुछ न कुछ खाने के लिए, तभी आप हमेशा कुछ न कुछ हेल्दी फूड खाएं, कुछ न कुछ पोषक देने वाला चीज ही खाएं ताकि आपके शरीर को नुकसान न पहुंचे। तो बहनों, हम आपसे बातें तो और भी बहुत सी करना चाह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम को ऐसे ही जारी रखें, लेकिन अगर घड़ी पर हमारी नजर जाए तो बहनों पता चलता है कि हमारा जो कार्यक्रम का समय है वे समाप्ति की ओर है। तो फिर मिलने के बाद एक साथ दीजिए अपनी बहन तस्लीम को इजाजत। नमस्कार।

अभी नारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई के अंदर से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कराने नए पुराने।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज का दिन है बहुत खास, क्योंकि हम मना रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार। ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये तो है रिश्तों का उपहार। आज इस सेलिब्रेशन में मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ सुदक्षिणा। आइए सुनते हैं किसना फिल्म से ये गाना, सुखविंदर सिंह और इस्माइल दरबार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल, इस्माइल दरबार का संगीत। सुखविंदर सिंह और इस्माइल दरबार के साथ का साथ दिया है आयशा ने।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं आग गले लग जा इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तारा माँ और पा की कहानी आप सुन रहे थे तारा रंपम फिल्म से। शान महालक्ष्मी अय्यर, स्नेहा सुरेश और श्रवण सुरेश की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल और इस गाने की धुन बनाई थी विशाल शेखर ने।

अभिजीत की आवाज में आप सुन रहे थे अंजाम फिल्म से ये गाना, समीर के बोल और म्यूजिक आनंद मिलिंद का। अगला गाना सुनते हैं शोले फिल्म से। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: कराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी वक्त हो चला है समाचार का। कुछ ही पलों में 6 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल

0: सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने, सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गाना अलादीन फिल्म से। विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी की आवाजों में विशाल ददलानी के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अभिजीत की आवाज़, यस बॉस फिल्म से जावेद अख्तर के बोल जतिन ललित का।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बनाया। अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। राज्य में इस मानसून सीजन में 21 जिलों में सामान्य बरसात। राजधानी जयपुर सहित 17 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। और प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व की रौनक और उल्लास।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रखे हुए है। खुदरा चीनी की कीमतें अब कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी रोक के बेचने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों में जन धन योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसने लाखों लोगों, खासतौर पर समाज के पिछड़े वर्ग को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का फायदा उठाने और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद की है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। साथ ही इन खातों में करीब 3,17,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है। खोले गए कुल बैंक खातों में से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साल 2014 में आज ही के दिन जन धन योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि योजना लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बना रही है।
1: प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार है जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1,00,000 रुपये का बीमा मिल सकता है।
0: वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत 78% बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जीरो बैलेंस बैंक खाते की सुविधा मिलती है। साथ ही 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी होता है। सेंट्रल बैंक के कार्यकारी निदेशक महेंद्र दोहरे ने बताया कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि डीबीटी होना इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

0: सभी जो खाता धारक है उनके साथ एक जो जुड़ाव हुआ है, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन हो यूपीआई के थ्रू, या फिर जो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसमें ये भी हुई, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो पैसे लाभार्थी को उनके खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं, बीच में कोई बिचौलिया या मिडिल मैन पहले की तरह नहीं रहता है, ये इसकी स्कीम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। पूरे पैसे लाभार्थी को मिले, पैसे का सही इस्तेमाल से सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट किया और उस खाते में ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उनको भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो मुद्रा स्कीम्स है, पीएम विश्वकर्मा है, पीएम स्वनिधि है, उनका लाभ लेने तक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और लोगों को खाते से आगे बढ़कर एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मिशन दिया।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के बुलावे पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 16% कम पानी बरसा है। अजमेर, बीकानेर, बूंदी, सीकर, चूरू, जोधपुर और कोटा सहित 21 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। वहीं जयपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर सहित 17 जिले सामान्य से कम बारिश वाले हैं। भरतपुर, डीग और फलौदी में ही सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। कोटा और बांसवाड़ा क्षेत्र के जलाशयों में सबसे अधिक पानी है। यहां बाढ़ने से 93% जल स्रोतों में पानी की आवक हुई है। वहीं प्रदेश भर के 693 छोटे बड़े बांधों में से 439 आंशिक रूप से भरे हैं और 55 बांध लबालब हैं। इस बीच अधिकतर स्थानों पर मॉनसूनी गतिविधियां फिलहाल एक सप्ताह के लिए धीमी पड़ गई हैं। हालांकि कल उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। बारिश की गतिविधियों में 4 सितंबर से फिर से तेजी आने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून की रफ्तार सुस्त होने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर में बीते 3-4 दिनों से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है।
2: वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं प्रभावी है। वही मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है, यानी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आगामी 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती के क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए गए हैं। इसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना।
1: प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव के तहत अगले महीने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने और सूची जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी, आरएलपी, बीएसपी, आप और आरएलडी भी अपने प्रभाव वाले स्थानों पर उम्मीदवार खड़े कर मुकाबलों को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हैं। ऐसे में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक गहमा गहमी बनी रहेगी। इस बीच इन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हुई। 309 निकायों के 10,245 वार्डों में कल पहले दिन उम्मीदवारों की ओर से 1,055 नाम निर्देशन पत्र भरे गए। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अब नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन शनिवार और सोमवार का समय है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्मिक चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विभिन्न प्रकोष्ठ चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आयोग ने 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए संबंधित क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

प्रदेश भर में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व का उल्लास छाया हुआ है। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार दिए।

0: श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए हर उम्र के लोगों में उत्साह देखा गया। बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। शेखावाटी अंचल में देश की रक्षा में शहीद हुए भाइयों की प्रतिमा पर राखी बांधने की परंपरा है। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं शहीदों की प्रतिमाओं को राखी बांधकर नमन करती हैं। इस बार भी चोरू, झुंझुनू और सीकर में कई प्रतिमा स्थलों पर भावुक करने वाले ये दृश्य देखे गए। वहीं कई बहनें कारागार में बंदियों को राखी बांधने पहुंची और भाइयों के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को जीवंत किया। उधर श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में स्कूली छात्राओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। राजस्थान पुलिस ने भी रक्षाबंधन के पर्व पर हर महिला और हर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी को अपनी प्राथमिकता बताया। आदिवासी अंचलों में भी रक्षाबंधन पर्व की खासी रौनक दिखाई गई थी। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल आदुराज में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात सहित अन्य राज्यों से आए पर्यटकों से बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। प्रदेश भर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी काफी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ ले रही हैं। इस बीच सावन के पवित्र महीने के अंतिम दिन आज शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक कर सुख शांति की कामना की। उधर हनुमानगढ़ में गुगा मेढ़ी मेले की आज ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुरुआत हुई। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई पीढ़ी से संस्कृत भाषा के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने संस्कृत को भारतीय ज्ञान परंपरा और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बनाया। अब तक 59 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। राज्य में इस मॉनसून सीजन में 21 जिलों में सामान्य बरसात। राजधानी जयपुर सहित 17 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। और प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व की रौनक और उल्लास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है साकेत गोयल ने। अरावली की पहाड़ियों में बसे सिरोही जिले में बीते दिनों धार्मिक आयोजनों, स्वतंत्रता दिवस, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम हुए। मॉनसून की बरसात के कारण जिले के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली की चादर छाई हुई है। वहीं माउंट आबू में बारिश के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की हाल ही में शुरुआत की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल और पिंडवाड़ा के माधव विश्वविद्यालय में किया गया। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक संगठनों से अभियान से जुड़ने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम करने का आह्वान किया। जिले में भी युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में गुरुजनों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। मंदिरों और आश्रमों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। इसके बाद सावन माह के दौरान जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और अभिषेक किए गए। सावन के सोमवार को सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज और माउंट आबू सहित विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रमों में भाग लिया। कई स्थानों पर झूले लगाए।

0: गाए गए और लोक गीतों के साथ तीज मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सिरोही के अरविंद पवेलियन में हुआ। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी जिले में कई गतिविधियां हुई। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और नागरिक दायित्वों की जानकारी दी गई। मॉनसून से अरावली की पहाड़ियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली छा गई है। खेतों में खरीफ फसलों की बढ़वार भी दिखाई दे रही है। बारिश के बाद माउंट आबू में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। नक्की झील, गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ियों पर बादल, बारिश के बाद बहते झरने और हरियाली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पर्यटकों की आवाजाही से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबार में भी काम बढ़ा है। जिले में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रम हुए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। युवाओं को अपनी शिक्षा और कौशल के साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। माउंट आबू में आयोजित दादी प्रकाशमणि अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों ने भाग लिया। आयोजन के माध्यम से खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित इस मैराथन से माउंट आबू की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इधर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज जिले भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर बाजारों में राखी और मिठाइयों की दुकान पर लोगों की भीड़ देखी गई। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। पर्व को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यातायात और सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्र सरकार कहो देश में शक्कर रो पर्याप्त स्टॉक, वाजिब दाम मथे चीनी मुहैया करावन सारू सगड़ा जरूरी जतन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा तहत हाल ताई 59 करोड़ बत्ता बैंक खाता खोल लिया। राज्य में चौमासारी मौजूदा ऋतु में हाल ताई 21 जिला में सामान्य बरसात। राजधानी जयपुर समेत 17 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। और प्रदेश में राखी रे मौके रौनक और उमाव। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार कहो है कि देश में शक्कर री कोई कमी नहीं है और वाजिब मूल माथे जरूरी तादाद में चीनी मुहैया करावन सारू सगड़ा जरूरी जतन कराया जा रहा है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय रे मुजब सरकार देश में चीनी री कीमत और स्टॉक माथे करड़ी नजर रख रही है। इबीचे खुदरा बाजार में शक्कर रो मोल कम भेवन लग्यो है। मंत्रालय रे मुजब सरकार चीनी री उपलब्धता तय करण सारू मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली री बजाय आवता महीनाओं हर पखवाड़ा में चीनी आवंटन रो सिस्टम शुरू करण रो फैसलो किन्नो है। ध्यान जोग है कि 15 अक्टूबर नु शुरू होण वाला नुआ पिराई सीजन में 10 लाख टन बत्ती शक्कर बनबारा आसार है। चीनी मिला ने अक्टूबर महीना में बनाई ची शक्कर बिना रोक टोक बेचण री मंजूरी दी जावेला। प्रधान

0: મોદી કહ્યું હે કે લાડલા 12 સાલમાં જનધન યોજના રો બદલાવ લાવવાળો અસર નજર આવ્યો હે વે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ જરીએ કહ્યું કે આ યોજના વિત્તીય સમાવેશનને બધાવો દેવણ અને જનતાને સક્ષમ બનાવવામાં ખાસ કામ કરી રહી હે ઈ યોજના રાતેજ હાલ તાઈ 59 કરોડ બત્તા બેંક ખાતા ખોલ દિયા ચ્યા હે જેમાં કરીબ 3,17,000 કરોડ રૂપિયા જમા કરાઈ ચ્યા હે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના રાતેજ ખોલી ચ્યા ખાતામાં આધાઉ બત્તા મહિલાવારા નામ હે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના સાલ 2014માં આજ હીરી તારીખને શરૂ કરી છી પ્રધાનમંત્રી કહ્યો કે આ યોજના લોકોની બેંકિંગ સેવામાં તાઈ પહોંચ આસાન બના રહી હૈ
1: પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના કે માધ્યમ સે હમ દેશ કે ગરીબ સે ગરીબ લોકો કો બેંક એકાઉન્ટ કી સુવિધા સે જોડના ચાહતે આજ કરોડો કરોડો પરિવાર હૈ જિસકે પાસ મોબાઈલ ફોન તો હૈ લેકિન બેંક એકાઉન્ટ નહીં ये स्थिति हमें बदलनी है देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए इसकी शुरुआत यहीं से होती है यही तो है जो खिड़की खोलता है और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1,00,000 रुपये का बीमा मिल सकता है।
0: वित्त मंत्रालय के मुजब प्रधानमंत्री जनधन योजना रातेत 78% बैंक खाता गांवाई और अर्ध शहरी हल्का माई खोली चिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रा कार्यकारी निदेशक महेंद्र दोहरे बतायो के बिना किसी बिचौलिया रा सीधा फायदो लेवन वाला रा बैंक खाता माई सीधी रकम भेजनो ई योजना री सब मोटी उपलब्धि है।
2: सभी जो खाता धारक है उनके साथ एक जो जुड़ाव हुआ है चाहे वो क्रेडिट लिंकेज हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन हो यूपीआई के थ्रू या फिर जो सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ये भी हुई जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो पैसे लाभार्थी को उनके खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं बीच में कोई बिचौलिया या मिडिल मैन पहले की तरह नहीं रहता है ये इसकी स्कीम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है पूरे पैसे लाभार्थी को मिले पैसे का सही इस्तेमाल से सेविंग किया इन्वेस्टमेंट किया और उस खाते में ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उनको भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं चाहे वो मुद्रा स्कीम्स है पीएम विश्वकर्मा है पीएम स्वनिधि है उनका लाभ लेने तक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और लोगों को खाते से आगे बढ़कर एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मिशन दिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल उज्बेकिस्तान यात्रा सारू रवाना भेला उज्बेकिस्तान रा राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ रा न्योता पाछे भे रही 2 दिन री ई यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री ताशकंद रो दौरा करेला इन दौरान दोनों देशों बीच रणनीतिक साझेदारी ने और मजबूत करने बारे में विचार करियो जावेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम रे 137वीं कड़ी फैला वो कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल आकाशवाणी समाचार री वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप मा थे प्रसारित करियो जावेला इस आगे एआईआर न्यूज डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल मा थे इन रो प्रसारण करियो जावेला ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर रो सुन रिया हो। प्रदेश में चौमासा री ई ऋतु में हाल ताई सामान्य 16% कम में बरसियो है। अजमेर बीकानेर बूंदी सीकर चूरू जोधपुर और कोटा समेत 21 जिला में सामान्य बरसात हुई जबकि जयपुर जैसलमेर सवाई माधोपुर टोंक और उदयपुर समेत 17 जिला में सामान्य कम बारिश हुई। भरतपुर डीग और फलौदी में सामान्य बत्ती बेखा हुई। प्रदेश का 693 छोटा मोटा बंधा मायू 439 थोड़ा घना भरिया है जबकि 55 बंधा लबालब भर गया है। इन बीच घनखर छोड़ा एक सप्ताह ताई चौमासारी बिरखा मंदी पटबारा आसार है। हालांकि काल उदयपुर संभाग में कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। बिरखा माए 4 सितंबर उजू तेजी आवन री संभावना है। चौमासारी बिरखा मंदी पर जावन गर्मी और उमस रो असर बदबा लग्यो है। श्री गंगानगर में लाडला 3-4 दिन री बगत पारो

0: 42 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करियो चाटियो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधे श्याम शर्मा और जानकारी टीमी।
1: वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं प्रभावी है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है, यानी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आगामी दो तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना।
0: प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव रहते तावता महीना फेवन वाला नगरीय निकाय चुनाव रे सरगर्मियां बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस समेत न्यारी न्यारी पार्टियां माए उम्मीदवारों रा नाम माथा विचार करण रो काम चल रियो है और उम्मीदवारों रा नाम तय करण सारू मीटिंग रखी जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी आरएलपी बीएसपी आप और आरएलडीई आपा प्रासर वाला हलका माए उम्मीदवार खड़ा कर और मुकाबला त्रिकोणीय बनावन माए लगोड़ा है। 309 स्थानीय निकाय रा चुनाव सारू हाल ताई 1055 पर्चा दाखिल कर दिया गया है। उम्मीदवार सारू 30 तारीख न दीतवार री छुट्टी न छोड़ पर्चा दाखिल करण सारू अब 2 दिन और बचा है। ये बीच राज्य निर्वाचन आयोग रा कर्मचारी चुनाव री तैयारियां पूरी करण में लगोड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग 9 और 11 सितंबर में पड़वा वाला वोटा सारू संबंधित हल्का माए मतदान वाला दिन छुट्टी रो ऐलान की न है। प्रदेश में आज राखी रो पर्व उमा उत्साह मनाई जा रही है। भाई बहन रा प्रेम रा प्रतीक ई पर्व रे मौके बहना भाइया री कलाई माथे राखी बांध हमारी सुख समृद्धि और लंबी उम्र री कामना कर रही है। जबकि भाई बहना री रक्षा रो संकल्प लेता थका मन उपहार दे रहा है।

सावनी पुन्नू ने मनाया जावन वाला ई पर्व सारू हर उम्र रा लोगा माए उमाव नजर आयो। बहना भाइया रा तिलक लगार मुंह मीठो करायो। शेखावाटी अंचल माए देश री हिफाजत करता शहीद हुआ भाइया रे मूरत माथे राखी बांधन री रीत है। हर साल मोटी तादाद माए महिलावा शहीदा ने मूरत रे राखी बांधर वहां नमन करे है। चूरू झुंझुनू और सीकर माए कई ठोड़ा शहीदा ने मूरत रे राखियां बांधी ची। कई बहना जेल माए बंद भाइया रे राखी बांधन सारू कैद खाना माए पोगी। श्रीगंगानगर बाड़मेर और जैसलमेर माए पाकिस्तान लागोड़ी सरहद माथे तैनात बीएसएफ रा जवाना री कलाई माथे स्कूली टाबरियां महिलावां और सामाजिक संगठन री ओर राखी बांधी जी। प्रदेश रा आदिवासी अंचला माए राखी री खासी रौनक नजर आई। सिरोही जिला माए सैर सपाटा री पहाड़ी ठौड़ आगुराज माए सैलानिया री मोटी तादाद पूगी। गुजरात समेत दूजा राज्यों आया सैलानियों बाजारा माए चहल पहल है। राखी रे मौके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड माथे मोटी तादाद माए लोग नजर आया। राजस्थान रोडवेज री बसा माए मुफ्त सफर रा सुबितारो मोटी तादाद माए महिलावां फायदो उठा रही है। ई बीच सावन महीना रा आखिरी दिन आज भगत भोलेनाथ रो अभिषेक कर सुख शांति री कामना कर रहा है। दूजी कानी हनुमानगढ़ जिला रो नामी गोगा मेड़ी मेलो झंडो चढ़ावन री रीत सागे आज शुरू हुयो। आज सावनी पुन्नू ने संस्कृत दिवस ही मनाई चियो। ये मौके न्यारा न्यारा संस्थान माए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखी चिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नवी पीढ़ी संस्कृत भाषा ने बधाओ देवन री अरज कीनी। वह संस्कृत में भारत री ज्ञान परंपरा और विरासत रो खास हिस्सो बतायो। हॉकी रा जादूगर कहा जावन वाला मेजर ध्यानचंद री जयंती काल राष्ट्रीय खेल दिवस रा तौर मनाई जावेला। देश माए खेल संस्कृति ने बधावो देवन सारू आज तीन दिन रो अभियान शुरू करी चियो। राष्ट्रीय खेल दिवस री थीम खेलेगा भारत जीतेगा भारत राखी ची है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। केंद्र सरकार कहो देश माए शक्कर रो पर्याप्त स्टॉक वाजिब दाम माथा चीनी मुहैया करावन सारू सगला जरूरी जतन करया चाहिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा तहत हाल ताई 59 करोड़ उम्बत्ता बैंक खाता खोली चिया। राज्य माए चौमासारी मौजूदा रूप माए हाल ताई 21 जिला

राजधानी जयपुर समेत 17 जिला में सामान्य कम पानी बरसो और प्रदेश में राखी रमक रौनक और उमाव। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम मैंडिक 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मांझी बहनों राम राम। किसान भाइयों आज ने कार्यक्रम में आपने बात करेंगे आपड़ी जो क्षेत्र में जो फसल है इनमें अगर कीट ने रोग लगी जाए तो एना कीट और रोग थे की बचाव बोले किसान भाइयों ने कया कया प्रकार ना प्रयास करवा जुए तो आना प्रयास में किसान भाइयों सप्त की महत्वपूर्ण है जे कीटनाशक फफूंदनाशक या जे खरपतवार नाशी जो दवाइया है એનો આપણે છિડકાવ હરતે કરે કિસાન ભાઈઓ આણનો ઉપયોગ કરવો અને સદુપયોગ કરવો ઓર હુંસી હુંસીને આણનો છિડકાવ કરવો બહુ આવશ્યક છે કેમ કે છિડકાવ કરતે સમયે જરાસી ભી અગર લાપરવાહી કરે તો એ કિસાન બલ્લે ફસલ બલ્લે ઓર પર્યાવરણ આણા તીને બલ્લે નુકસાનદાયક સાબિત થઈ શકે એટલે આજે આપણે વાત કરંગા કે ફસલમાં જે દવાઈનો છિડકાવ આપણ કરે એના સમયે એના ટાઈમ ઉપર कई कई सावधानी में अपन ने ध्यान रखो जो तो सप्ते की से पहली सावधानी है ये है सही दवा नो चुनाव करो आपड़ी खेतर से फसल है इनमें कई रोग या कीट है आनी आपने सही पहचान करवी जुए और इन बाद इन बल्ले जे आपने सिफारिश कर ली है या जे अनुशंसित दवाई है इन उपयोग करवो जुए और दवा की जो मात्रा है ये आपने मन थी की नती बढ़ा दी हमेशा दवाई जे लेबल लगेलो रहे एन माते जे मात्रा ने जे कृषि विशेषज्ञ है एनमें जे सलाह है एने आपने अवश्य मानवी जुए। एक और बात है किसान भाइयों दवा मलाव ने जरूरत या एनो जे घोल बनाव एन युगत सावधानी नहीं तो आपने किसान भाइयों कार्य भी दवा ने नंगे हाथ आपने ने छू जुए दवा तैयार करते समय हाथ में जे दस्ताना रहे हैं मोड़ा माता मास्क रहे हैं या पूरा शरीर में ढाकी ने राखी सके एवं कपड़ों उपयोग करो जुए ताकि आज दवाई है ये अपने शरीर में आता है या मोड़ा में जाए दवा ने मोड़ा थे कि खुलवो या इन्हें होंगवा नहीं अपने कार्य पहचान बल्ले कोशिश नहीं करवी जुए और छिड़काव नो सही समय आनो भी बहुत ध्यान रखू पड़े जिम के तेज हवा चली रही हो बारिश हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो एना समय में दवाई नो छिड़काव अपने नहीं करवो जुए और कोशिश करो या ज्यादातर अपने हवा रे ने हाजने समय जारे हवा कम हो आनी वगत छिड़काव करो बहुत सही रहेगा। तेज हवा में अगर अपने छिड़काव करेंगा तो ये दवा उड़ी में किसान माते आसपास में जे बिजी लोग हो इन माते या जे बिजी फसलें हैं ए तक पहुंचने ने नुकसान पहुंचा दे सके। आम नाम एक और सावधानी है छिड़काव करते समय सुरक्षा नहीं तो किसान भाई छिड़काव जरूरत करो यानी तो धूम्रपान नहीं करो जुए का खान पान अपने नहीं करो जुए पानी भी नहीं पीव जुए और हवानी से दिशा है इनो ध्यान रखते जीने हमेशा हवानी दिशा में विपरीत या सही तरीका थे कि अपने अगाड़ी बढ़ते जीने छिड़काव करो जुए ताकि जो दवाई है ये अपने शरीर ऊपर नहीं आवे। किसान भाइयों पांचवी सावधानी जड़ में जे मधुमक्खी है या जे उपयोगी जीव है एड़न सुरक्षा नो क्योंकि फसल में फूल आबा बाद आपड़े कीटनाशक नो अगर प्रयोग कर तो आने आपड़े सावधानी नहीं रख तो जे मधुमक्खी है या जे बिजी एवो कीट है जे फसल में परागण में इन जे महत्वपूर्ण भूमिका रहे आ दवाई ने छिड़काव करवाते कि अगर इनमें नुकसान पहुंचे तो आज कीट है या जे मधुमक्खी है इनकी जे सक्रियता जे समय है इन अपने बची ने छिड़काव करो जुए और आवश्यकता ने अनुसार हाज ने समय आनो छिड़काव करो जुए। किसान भाई दवा ने लेबल ऊपर फसल माते जे छिड़काव ने जे अंतिम छिड़काव जे है या कटाई ने वेस्ट में जे छिड़काव है आने वेस्ट में अपने દેખવામાં આવે ગયા એ ખરેખર આપણે વાસી શકીએ કારણ મેં અંતરાલ આલેલું રહે તો હંમેશા કિસાનને આના સમયનું પાલન કરતો જઈને આપણી ઉપજ અચ્છી લેવા બદલે દવાઈનો છિડકાવના હિસાબે કરવો જોઈએ। દવાને જે ખાલી ડબ્બા હે કિસાન ભાઈઓ કેમ કે છિડકાવ કરવા બાદ જે ખાલી ડબ્બા બચી જાય હે એની દવાની ખાલી બોટલને યા જે પેકેટ રહે એને પાણીને સ્ત્રોત ખેતરે યા ઘરને જે આસપાસ કે

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान भाइयों, भजन बाद हवे आपणे वात करें आपणे पशुधन नी। आपणो पशुधन जे है किसान भाइयों, ये आपणे पहले बहुत महत्वपूर्ण आयनो स्रोत है। और पशु अगर आपणे संतुलित आहार आल, स्वच्छ साफ पानी आल, साफ सुथरो इन बल्ले वातावरण रहे और समय पर इन स्वास्थ्य की देखभाल मिली जा तो पशु स्वस्थ रहे और इन्हें जो दूध उत्पादन की क्षमता है ये भी बढ़िया रहे, बेहतर रहे। तो आपने बात करें कि आप जो पशुधन है इन्हें उचित देखभाल हरते करो, तो सबसे की पहली बात है किसान भाइयों, पशु ने आहार नहीं, पशु ने इन उम्र है, इन्नी नस्ल, वजन ने जो दूध न उत्पादन है इन्हें अनुसार संतुलित आहार आलव जुए, हरा चारा हाथे हाथे सूखो चारो भी आवश्यकता अनुसार आलव और एड़में दाना या जो खनिज मिश्रण है इन्हें आलव भी लाभदायक रहे। जे चारो है हमेशा साफ रहो जुए और ई फफूंद रहित रहो जुए। बीजी महत्वपूर्ण बात है स्वच्छ पानी नहीं, तो किसान भाइयों पशुओं ने

0: कूड़ादाना में पर्याप्त मात्रा में साफ ने ताजो पानी उपलब्ध करा बुजुए। गर्मी ने मौसम में एकदम थे कि अगर अपने ताप बढ़ी जाए बारिश रोकी जाए तो पशु ने वधार प्यास लगे एटले एणनी जे आवश्यकता है पानी नी ई बढ़ी जाए तो एना आवश्यकता ने अपने पूर्ति करवी जुए। पशु नु जे रहेवानु स्थान है या जे पशु घर है अपने पशु ने जे खरेक बांध ई स्थान साफ सुथरु सूखु और हवादार रहेवो जुए। गोबर और मूत्र ने नियमित सफाई करवी जुए और फर्श पर पानी के जमीने आने भी आपने देखू जुए केम के बरसात ने मौसम में आना बारिश ने दाण में आप खास कर पशुशाला है एणमें आपने जल भराव थकी इनने बचावी राखव जुए। पशु ने स्वास्थ्य पर अपने खास ध्यान देव है जिनमें पशु नो व्यवहार केवो है इन खान पान की आदतें हरते हैं इन दूध नु उत्पादन केटलू है और शरीर में तापमान में आपने अगर कहीं असामान्य बदलाव देखा तो आपने वना देरी करे तरत जईने आपणो जे पशु चिकित्सक है इने थी के संपर्क करवो जोईए और हाथे हाथे किसान भाई पशुओं ने समय समय पर अपने टीकाकरण ने जे कृमिनाशक दवाएं हैं ये पशु चिकित्सक ने सलाह अनुसार जरूर आलवी जोईए। पशुओं में क्योंकि गर्मी और सर्दी आ बे तरह मौसम जो है इन थी कि बचाई ने राखव आवश्यकता है एटले जे कोई गर्मी पड़े अवड़े तो पशु ने हमेशा छायादार या हवादार स्थान पर बांधव इनने पर्याप्त पानी आलवो और पशुशाला सुरक्षित जगह बनावी जोईए। दूध निकालते समय आपणे इने पहले हाथ बर्तन ने पशु ना जे थन है इने साफ कर देवा जोईए और दूध निकालवानी जे जगह है ई भी स्वच्छ रहेवी जोईए। आने थी कि दूध नी जे गुणवत्ता है ई बनेली रहेगा और पशु में जे संक्रमण नो खतरो है ई भी नहीं रहेगा। तो किसान भाई आपणे आणी वात नो ध्यान राखवू है जेने थी कि आपणे अच्छू उत्पादन मिली शके और आने बारे वात आगळी करो एनी पहले आ संदेश सांभळी लो।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: तो देखो किसान भाइयों पशु ने अपने नाना रीते अपने ध्यान रखू है इन स्वास्थ्य ने अपने बनावी रखू है ताकि इन जो दूध उत्पादन है एक कम ने था और अपने कहीं आर्थिक नुकसान ने था। तो आ तो रही पशु ने देखभाल नी और इन स्वास्थ्य ने बनाई रखवानी बात माते अजी करवी थी पर आज नो समय नहीं पूरो थी रो है। काले एक नवी जानकारी लेने अपने फिर मिलो तार तक आप आलो आज मानजी भाई ने आज्ञा ए आवजू राम राम राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: खेती बाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला किसान साथिया ने अभिलाषा पारिक की ओर सुनी भरी राम राम सा। और किसान साथियों देखो, आज आपा सब खूब धूमधाम से रक्षाबंधन को त्योहार मनाया जा। और देखो, जब ई त्योहार का महत्व की आपा बात करा तो इन्हें अपना जो भाई हुए छे वो अपनी बहना ने रक्षा को वचन देवे छे। और इनके साथ साथ अपनी बहना वाके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधर वाकी लंबी उम्र की प्रार्थना करे छे। तो सभी को बहन और भाइयों को ये जो अनूठो बंधन छे उन्हें यो त्योहार अच्छी तरीका से समझा देवे छे। पर जब आप बात करा अपनी नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति अपने लिए हमेशा से ही पूजनीय रही छे। आज आप अपने देवी देवताओं ने देख लेवा, अपना जो स्वतंत्रता सेनानी हुए छे वाने देख लेवा, या देख कह देवा कि कोई भी क्षेत्र में यदि आप अपनी नारियां की बात करा तो कठे भी अपनी नारियां आपने पिछाड़ी कौन दिखे। इसलिए ही आप सब ने जो नारी शक्ति है वे को पूरा दिल से सम्मान करना चाहिए जी। और जब बात देखो आप सम्मान की करा तो बहुत सारी चीजें ऐसी छे कि जाको आपने सम्मान यदि आप कर रहे छा तो वे चीजें आपने लिए लाभदायी हो सके छे। और जब खेती बाड़ी की ही बात करा तो खेती बाड़ी में जब आप समय को मोल जाना, क्योंकि देखो कोई भी काम हो बिना आप समय सारू करा तो वो काम आपने लिए बहुत ही लाभदायक हुए छे। जैसा कि आप देख लेवा कि अपना जो खेत है बीमें बीज की बुआई से लेर फसल की कटाई तक हर चीज को, हर काम को समय निर्धारित रहे छे। यदि आप बीमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो अपनी फसल आपने अच्छा उत्पादन कौन देवे। इसलिए समय को महत्व अपने खेती बाड़ी में बहुत है। इसलिए समय को मान रखता हुआ आपने सारा काम समय सारू कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो यदि आप देख रहे चाहे जब कोई मौसम है जिसमें आपने बीज की बुवाई करनी चाहिए और आप उस समय चूक गा तो देखो वो समय आपने लिए दोबारा कौन आवेलो। कोई भी बीज की बुवाई आप देरी से कर रहे चाह तो वो को उत्पादन आपने आशा के अनुसार कौन मिले लो। यही आप यदि फसल में बुरकाव छिड़काव या कोई कीटनाशक की रोकथाम के लिए कर रहा चाह, यदि कीट लाग रहा चाहे फसल में आप उस समय उस पर ध्यान न दे रहा हूँ और जब कीट को प्रकोप बढ़ गो उस समय आप यदि ध्यान दे रहा है तो वो अपने लिए नुकसानदायक साबित हो लो। बात करा सिंचाई की तो सिंचाई भी इतने महत्वपूर्ण काम है कि जिन्हें आप समय सारू कर लेवा। कई फसलें तो ऐसी हुए छे कि जामे आपने फूल आता समय या फूल आबा के पाछे सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि हर फसल में यो काम भी निर्धारित छे। तो इसलिए यदि आप समय के हिसाब से कोई भी काम न करा तो वो अपने लिए नुकसानदायक ही हो लो। इसलिए समय को आपने ध्यान रखना चाहिए। जे या फसल की कटाई की बात आप करा, जब अपनी फसल कटर तैयार हो चुकी है उस समय यदि आप अपनी फसल की कटाई न करा और उनके थोड़ा दिन पाछे भी यदि आप कटाई शुरू करा तो वो भी अपने लिए नुकसानदायक है। तो समय को मान इतनो बड़ो है कि यदि आप कोई भी चीज में या खेती बाड़ी की ही बात न करा, कोई भी बात करा आप यदि आप उनमें समय को ध्यान न रखेगा तो आपने जो काम है वो आपने फायदो कौन पूछा लो। और यदि आप उचित फायदो चाहवा उन्हीं के अनुसार आपने काम करना चाहिए। यही आप पशुपालन में ले लेवा, आपने जो पशुपालन है वो अपना कई किसान साथी तो पूरी तरीका से पशुपालन पर ही निर्भर है तो वाने तो इन चीज को विशेष ध्यान रखना चाहे। अपना जो पशुधन है देखिए टेम टेम पर आपने सार संभाल कर लेनी चाहिए, समय पर लगवा वाला टीका माने लगवाना चाहिए। इनके साथ साथ समय रहता ही यदि आप अपने बाड़ा का निरीक्षण कर लेवा और देखा कि आपने जो पशुशाला है वीमे कोई भी पशु आपने दिनचर्या से थोड़ा सो अलग दिखाई दे रहे हो तो तुरंत आपने चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। इसलिए आप देखा जाए कि कोई भी यदि काम आप उठावा, आज अपनी बहना ही है घर में भी समय के हिसाब से यदि काम न करे तो देखो घर का जो और परिवार का सदस्य है वाने परेशानी को सामना करना पड़े लो। तो यह सब परेशानियों से बचबा के तानी आपने समय को मान रखना चाहिए। और समय का महत्व जानता हुआ, समय का महत्व ने समझता हुआ ही कार्यक्रम में भी समय उचाले हुए एक मीठा सा गीत को तो सुन लेवाई पड़ी सो गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: जी सा, तो ई गीत के पाछे अब समय आ चालियो है अपने जानकारी को। तो जानकारी देवे खातिर अपने साथ है अशोक कुमार शर्मा।
3: कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाया का प्रयोग में सावधानियां। तो किसान साथियों, ई विषय माथे जानकारी देवे खातिर अपने साथ है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक। तो डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सर।
4: राम राम सर किसान।
3: तो सर, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कीटनाशी और फफूंद नाशक के उपयोग पे, तो सबसे पहले जो किसान साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं वाने यू ही बताओ कि फसल उत्पादन में कीटनाशक और फफूंदी नाशक

0: कहूँ, मैं तो कहीं से।
1: हाँ देखिए किसान भाइयों, आज के टाइम पे जब भी हम कृषि से उत्पादन ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नई नई उन्नत किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा उत्पादन में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन साथ साथ अगर आप देख रहे होंगे तो कीट है, बीमारियां हैं, खरपतवार है, उनके संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है
0: जी।
1: और अधिक उत्पादन लेने तो क्या होता है, जैसे बुआई से पहले ही हम बीज उपचार भी करते हैं, फिर उसके बुआई के बाद भी कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, इनके बचाव हेतु विभिन्न रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अधिकतर रसायन जो होते हैं, या कीटनाशी हो चाहे फफूंदीनाशी हो, वो जहरीले होते हैं
0: जी।
1: इसलिए इनका प्रयोग जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है कि इनके प्रयोग में सावधानी रखें। अगर आपने इनके प्रयोग में सावधानी नहीं रखी तो ये आपके लिए भी और आपने जो जीव जंतु उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। और ये देखिए, सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें कीटनाशी और फफूंदीनाशी का प्रयोग कब करना और उनके जो घातक प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए जरूरी यह है कि जो भी कीटनाशी फफूंदीनाशी है उनके जो निर्देश दिए गए उनका पालन ढंग से की जाए और किसी तरह की लापरवाही ना बढ़े। और मैं किसान भाइयों आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि तुरंत कोई कीट या बीमारी का लक्षण देखते ही जो घर में दवा पड़ी होती है उसका छिड़काव करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने खेत को पर्याप्त समय दें और आप ये देखें कि कीटों का प्रकोप अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तभी जाके आप उसके लिए रसायनों का प्रयोग करने की सोचें। ज्यादातर प्राकृतिक नियंत्रण की तरफ ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कोई कीट आ रहा है, कोई रोग आ रहा है, अगर आपको लगता है, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि कोई रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें, आसपास जो खरपतवार है उनको नष्ट कर दें, और फसल में अगर हानिकारक कीट और लाभकारी कीटों का अनुपात 2-1 हो तो किसी रसायन की छिड़काव ना करें, और शत्रु कीट की अगर संख्या बढ़ती है तो ही आप उनका छिड़काव करें। और इसके लिए ये जरूरी भी है कि कीटों को और बीमारियों को पहले पहचानना सीखें कि ये कौन सी बीमारी है, कौन सा कीट है, और जो भी आपके कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। और ये ध्यान रखें कि ऐसे समय पर छिड़काव करें जब आपके जो लाभकारी कीट है, मधुमक्खियां हैं, परागण की कीट है, उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। इस तरीके से इनका आज अधिक उत्पादन लेने के लिए, बीमारी कीट और खरपतवारों को रोकने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक हो गया है, लेकिन प्रयोग के साथ साथ इसमें सावधानी बरतना भी आवश्यक है
0: जी। साहब तो सब देखो, या तो बात हुई यहाँ का महत्व की, पर यदि जो अपना किसान साथी यदि रासायनिक कीटनाशक और फफूंदी नाशक ने काम मिले वो चाहे वहाँ कुछ छिड़काव कर वो चाहे तो वाने काम में लेता समय और छिड़काव करता समय कौन कौन सी मोटी मोटी सावधानियाँ छे जो अपना किसान साथियों ने रखनी जरूरी है।
1: हाँ देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप याद रखें कि जब खरीदारी करें तो कोई भी चाहे बीमारी हो, कीट हो, खरपतवार हो, उसकी आप अच्छी तरह से पहचान करें, क्योंकि हर बीमारी के लिए, कीट के लिए या खरपतवार के लिए अलग अलग रसायन प्रयोग किए जाते हैं। तो या तो अगर आपकी कोई पूरी जानकारी हो आपको, और आपको अगर इसकी पहचान में कोई समस्या है तो कोई कृषि विशेषज्ञ हो, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, उनसे इनकी पहचान करवा लें, और इन रसायनों को केवल पंजीकृत दुकानों से खरीदें, दुकानदार से पक्का बिल लें। और एक चीज और देखिए, कुछ किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं, तो ऐसा ना करें, जितनी आवश्यकता उतना ही रसायन खरीदें। और जब भी कोई कीटनाशक या फफूंदीनाशक को खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके जो बनने की तिथि है या एक्सपायरी डेट है उसको अवश्य देखें, और अच्छी तरह जो पैक कीटनाशक है उसी को खरीदें, किसी भी प्रकार के कटे फटे रिश्ते हुए डिब्बे में ना खरीदें
0: जी।
1: और खुले कीटनाशक तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। दूसरा क्या है कि आप ये देखिए कि कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि इनका भंडारण करने लग जाते हैं, तो मेरी आप लोगों से सलाह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितनी आवश्यकता उतना ही खरीदें, फिर भी अगर आपके कुछ ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर आप पास आ गया है तो एक तो ये ध्यान रखें कि जो आपका भंडारण है उसका मूल डिब्बे में ही करें, ऐसा ना करें कि कोई कीटनाशक को दूसरे डिब्बे में डाल लें, और सूखे और ठंडे स्थान पर रखें, धूप आदि से बचाव करें, कोई भी एक ढक्कन को अच्छी तरह से कस के बंद कर दें, और जैसे कीटनाशक है, फफूंदीनाशक है, शाकनाशी है, इनको अलग अलग ढंग से वर्गीकृत कर रखें, और बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि कई बार इस तरह के हादसे हो गए हैं कि बच्चों की पहुंच से उन्होंने उसको लापरवाही से निगल लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जैसा आपने कहा कि भाई किस तरीके से हम लोग इन पे पूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को, तो देखिए किसान भाइयों जब भी आप उपयोग करते हैं तो आप इनके साथ में हर दुकान से आपको हर रसायन के साथ एक पुस्तिका मिलेगी या कोई पंपलेट मिलेगा, उसमें पूरी जानकारी दी हुई होती है कि इसका कैसे इस्तेमाल करें, कैसे घोल बनाएं, तो वो सब चीजों को आप ढंग से अच्छी तरह पढ़ लें। और जो भी आपका स्प्रे डस्टर है

0: उसको मशीन को पानी भरकर खाली चलाकर नोजल आदि को अच्छी तरह से साफ कर लें। नोजल की सफाई कभी भी मुंह से फूंक मार कर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि अच्छी तरह सफाई नहीं करने से क्या होता है, जैसे आपके कोई खरपतवार नाशी का आपने किसी फसल में प्रयोग किया और दूसरी फसल के अंदर अगर कीटनाशी का प्रयोग किया है और खरपतवार नाशी का जो स्प्रेयर है उसको ढंग से साफ नहीं किया तो दूसरी फसल पे खरपतवार नाशी के अंश की वजह से फसल को नुकसान हुआ है।
1: मतलब फायदा की जगह नुकसान भी
0: नुकसान, क्योंकि उसमें खरपतवार नाशी भी शामिल हो गया है। तो ये ध्यान रखें और निश्चित मात्रा में, किसान भाइयों ये भी मेरा आपसे अनुरोध है कि कई बार क्या होता है बताई मात्रा से किसान भाई लापरवाही से ज्यादा मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, पेड़ों के लिए भी, पौधों के लिए भी हानिकारक है। तो जितनी मात्रा है सिफारिश है उसी के अनुसार प्रयोग करें। और एक चीज और देखें कि सामान्य तौर पर हालांकि बाजार में कुछ कीटनाशक फफूंदी नाशक ऐसे मिलते हैं जिनको आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप कोशिश यही करें कि उसको सामान्यतः जो एक तरह का रसायन का ही दूसरे रसायन के साथ घोल ना बनाए और स्प्रे डस्टर आदि का ढक्कन बंद करें, पूरी दवा खत्म होने तक मशीन को चलाएं। तो ये सब चीजों की आप एक तरह से सावधानी अगर आप रखेंगे
1: जी
0: तो आपको ये इससे जो कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं वो नहीं होंगे। और साथ के साथ ये भी एक ध्यान रखें कि जब आप उपयोग करते हैं तो इस समय बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। कुछ किसान भाई हमारे बड़ी लापरवाही करते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने पूर्व में कहा सारे रसायन विषैले होते हैं, है ना, हानिकारक होते हैं। तो हमेशा दस्ताने पहने, नाक पर मास्क लगाएं, कपड़े का प्रयोग करें, आंखों पर चश्मा लगाएं, सिर पर कपड़ा बांधें, शरीर को पूरी तरह से ढकें ताकि कोई कीटनाशक ना गिरे। अगर आपके कोई शरीर में घाव है तो उस पर मोटी पट्टी बांध लें। सायकाल हवा नहीं चलने पर ही छिड़काव करें, और छिड़काव हो या बुरकाव हो वो हवा की दिशा में ही करें। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ही हवा आ रही है तो पूरी दवा आप ही के ऊपर गिर रही है। और छिड़काव बुरकाव इस तरीके से करें कि पौधे की पत्तियों के ऊपर या नीचे दोनों ओर दवा चिपक जाए, क्योंकि क्या होता है कीट और रोग पत्तों की निचली सतह पर ही पहले प्रयोग अधिक होता है। और एक मैं किसान भाइयों से और निवेदन करना चाहूंगा कि हमने देखा है कई बार कि छिड़काव बुरकाव करने के बाद थोड़ी देर किसान रेस्ट करने के लिए बीड़ी सिगरेट पीने लग जाता है, तंबाकू खाने लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप पूरा कीटनाशक का छिड़काव कर लें, फफूंदी नाशक का छिड़काव कर लें, बुरकाव कर लें, उसके बाद ना धोकर ही आप इनका प्रयोग करें। और हमेशा बच्चे हो पशु पक्षी इनको कोशिश करें कि बुरकाव और छिड़काव के समय इनको खेत में नहीं आने दें। और जब आप उपयोग कर लेते हैं तो आपका जो स्प्रेयर है डस्टर है उसी समय पर बर्तन को जो भी आपका काम में ले रहे हैं साबुन या कपड़े धोने का जो पाउडर आता है उसको दो बार अच्छी तरह से सफाई करके धोएं। और जो भी कोई व्यक्ति छिड़काव करता है वो हमेशा साबुन से नहाना चाहिए, कपड़े भी सारा साबुन से धोना चाहिए। और एक ये ध्यान रखें कि इन डिब्बों को किसी भी अन्य काम में नहीं लेना चाहिए, इन्हें जलाने की बजाय तोड़कर जमीन से 2 फुट गहरे गड्ढे में दबा दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो जरूरी है रसायनों का छिड़काव करना फसल को बीमारी कीटों खरपतवारों से बचाने के लिए, आपका वो भी काम हो जाएगा और आप इनके जहरीले प्रभाव से खुद भी बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार वालों का बचाव कर सकते हैं, अपने पालतू जानवरों का बचाव कर सकते हैं। अगर इन सावधानियों को रख के आप कीटनाशकों फफूंदी नाशकों का छिड़काव या बुरकाव करते हैं तो
1: दवा को मतलब थोड़ी सावधानी जरूरी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: तो सर बात कर रहा थी किसान का स्तर पर कीटनाशक की जो विषाक्तता हो छे बिकम मुख्य कारण कौन कौन सा छे।
0: हाँ देखिए किसान भाइयों, इतना सब बताने के बाद भी कई बार किसानों की जो लापरवाही होती है वही एक तरह से उनकी विषाक्तता का मुख्य कारण होता है। क्या करते हैं किसान भाई, कई बार अनजाने में होती है, कई बार वो जानते नहीं है, कई बार लापरवाही करते हैं तो जो सुरक्षा प्रदान करने वाले साधन है उनका उपयोग में नहीं लेते हैं, जैसे कि दस्ताने हैं, मास्क है, धूप के चश्मे हैं, सुरक्षा देने वाली पोशाक इत्यादि, ये सब आजकल बाजार में बहुत सस्ते दामों में भी उपलब्ध है। तो आप जब भी ये काम करते हैं तो लापरवाही न बरतें, इनका प्रयोग करें और जो सावधानियां आपको बताई गई है उनका आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप उस तरीके से करते हैं तो कभी भी आपको इसके जो जहरीले प्रभाव का शिकार नहीं होंगे और इसमें लापरवाही बरतने से आप इसका शिकार बन सकते हैं।
1: जी सर, तो सर अब ये बताओ कि जो अपना कीटनाशक और फफूंदी नाशक है वहां में थोड़ी सी भी यदि आप देखो सावधानी रख रहे हैं पर कई बार यह हो जाए कि लापरवाही हो ही जाए या कोई चूक हो ही जाए, तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति प्रभावित होगो तो बीके थानी प्राथमिक चिकित्सा कहीं देनी चाहिए।
0: हाँ देखिए, ये बहुत बढ़िया है कि इतना सब सावधानी बरतने के बाद भी या कुछ लापरवाही की वजह से या कुछ हवा की वजह से या कुछ मौसम की वजह से अगर आपको विष का असर महसूस होता है, जैसे कि कोई चक्कर आ रहा है, शरीर में सिर में भारीपन लग रहा है, कोई पेट दर्द शुरू हो गया, सिर दर्द

0: हो गया, उल्टी किसी लग रही है, तो आप तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लें। और इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके सूंघने से कई बार वो जहर अंदर चला गया है
1: जी,
0: या कई बार गलती से आपने खा लिया है, तो अगर कोई ऐसी चीज आपको लग रही है तो एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक मिलाकर तुरंत उल्टी करनी चाहिए। और कोई भी जो विस्मारक दवा उसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप एट्रोपिन आती है जिसका 1 ml का इंजेक्शन लगवाएं और तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा से आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं अगर ऐसे लक्षण आपके पास में आ रहे हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने मान लो सूंघ लिया है, कई बार किसान गलती करते हैं, तो तुरंत ही खुले स्थान पर जाएं, शरीर के कपड़ों को ढीला कर दें, और यदि कोई दौरा सा पड़ रहा है तो अंधेरे स्थान पर ले जाएं। यदि सांस लेने में समस्या हो रही है तो पेट के सहारे लिटाकर उसकी बाहों को सामने की ओर फैला दें और रोगी की पीठ को हल्के हल्के सहलाते हुए दबाएं। और उसके बाद में आप इन सब उपचारों के बाद में तुरंत जो आपके नजदीकी अस्पताल है डॉक्टर उसके पास ले जाएं
1: जी,
0: तो वो आगे का उपचार इसमें अवश्य करवाए
1: जी साहब। तो सब देखो भैया, तो अपनी जो खेती बाड़ी किसान साथी करे छे, वो खेती बाड़ी में जितनी भी कृषि क्रियावा वे कर रहा छे वहां के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित छे, पर यदि अपना किसान साथी ये कीटनाशक और फफूंदी नाशक ने काम में ले रहा छे तो यहाँ का छिड़काव और भुरकाव को भी कोई उचित समय छे?
0: हाँ जी, देखिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब शाम के समय पे करें, उस समय क्या होता है कि जो मधुमक्खियां होती है उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो एक तो उन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भुरकाव वगैरह प्रातः काल में भी किया जा सकता है, क्योंकि जो कोई औस जो सुबह रात में गिरती है
1: जी,
0: तो भुरकाव करने से पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपक जाती है। और अगर आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई तेज हवा चल रही है तो आप छिड़काव या भुरकाव ना करें, और छिड़काव के समय हवा स्थिर होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें
1: जी। तो सब कई बार किसान साथियों के मन में ये सवाल भी आवे छे, कई बार देखने में आवे छे कि अपना किसान साथी यह चीज करे भी छे, जहाँ की कीटनाशक और फफूंदी नाशक या दोनों ने मिलार फसल पर छिड़के छे, तो कई यहाँ ने मिलार छिड़कवा से कोई फसल पे इनको विपरीत प्रभाव भी पड़े छे?
0: देखिए बाजार में बहुत सारे कीटनाशक और फफूंदी नाशक इस तरीके से आ रहे हैं कि जिनको आपको अकेले ही प्रयोग करने से प्रभावशाली रहेंगे, और कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको आप दो मिला के छिड़काव या भुरकाव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हर कीट की और हर बीमारी का अपना एक जीवन चक्र होता है, तो उसके लिए अलग अलग तरह का कीटनाशक और फफूंदी नाशक की सिफारिश की गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके साथ मिलने वाले जो पुस्तिका है पंपलेट, उसको अच्छी तरह से प्रयोग करें, और उसमें आप देखें कि कोई अन्य पदार्थ अगर नहीं मिलाना तो उसे अकेले ही प्रयोग करें, क्योंकि दो दवाओं के साथ छिड़काव से पौधे पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है
1: जी।
0: और स्प्रेयर भी आपका खराब हो सकता है, इसलिए अगर कोई कॉम्पेटिबिलिटी है किसी कीटनाशक और फफूंदी नाशक को जब आप खरीदेंगे, निर्भर करता है कि आपके कौन सी कीट है कौन सी बीमारी है, तो अगर ऐसा है तो ही आप मिलाएं, अन्यथा हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप अकेले ही उसका प्रयोग करें जिस रोग एवं कीट के आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
1: तो वासा डॉक्टर साहब अशोक कुमार शर्मा जी थे कार्यक्रम में पधारिया और इतनी बढ़िया उपयोगी जानकारी मका किसान साथियों से साझा की, एक इतनी आपको घनो घनो धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: तो देखो साहब, धन्यवाद तो आपा अशोक कुमार शर्मा जी ने दे दिया, पर धन्यवाद आपा कोरो कोरो कौन देवा अपना कार्यक्रम की रीत को ने, तो सुनवा दे भाई बढ़िया सो गीत।

वासावाई मीठा सा गीत के साथ ही कार्यक्रम खेतीबाड़ी को टेम भी पूरा होते चालू है। तो कार्यक्रम ने देवा अठही विराम, आज्ञा दियो अभिलाषा ने, राम राम।

श्रोताओं भी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और आप आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। मनापुरम।

0: ना सुनिए, फिल्म है लक बाय चांस, कलाकार है शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और इला अरुण की युगल आवाज में सुनिए। गीतबद्ध किया जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने, सुनिएगा।
1: मैं तन्हा

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म 36 चाइना टाउन से। कुणाल गंजावाला और अलका याग्निक की आवाजों में गाने के बोल लिखे समीर ने। संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

बाय चांस मूवी से ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना, शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और इलार अरुण की युगल आवाजों में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन था शंकर एहसान लॉय का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म है सिंगिंग किंग, कलाकार राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए। गाने के बोल लिखे मयूरपुरी ने, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

फिल्म सिंह इज किंग का ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गाने की बोली थी मयूरपुरे में, संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म है रॉक ऑन, डोमिनिक सरोजो की आवाज में सुनिए। गाने के लिखे बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

0: राकॉन फिल्म का ये गीत आपने सुना डोमिनिक सरोजा की आवाज में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर हसन रॉय का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला व अंतिम गाना। फिल्म का नाम है अजनबी। कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सुनिए। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

अजनबी मूवी से ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गाने के वो लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चरण से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है और अब से बस थोड़ी देर में सुनिए पहले स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का। 9:00 सुनिए News@9 का सीधा प्रसारण और 9:15 पर सुनवाए जाएंगे उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 पर सुनिए करंट अफेयर्स का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी चेस की, जहां भारत के आर प्रज्ञानंदन ने रचा है इतिहास और बन गए हैं ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी। आज रुख किया जाएगा नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने बिना डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जीरो के अंतिम दौर में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था, हालांकि भारत का यह स्टार खिलाड़ी पहुंच गया है डायमंड लीग फाइनल में, जो अगले महीने खेली जाएगी। पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज भारत के वेनवल सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लाज फारकस से होगा। और अंत में कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला क्रिकेट एशिया कप का, जो आज से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शुरू हो गया है। भारतीय टीम रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान का आगाज करेगी।

0: आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए शतरंज के पिसाद से आई हुई एक शानदार उपलब्धि से, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फेबियानो करुआना को 15-13 से हराकर यह खिताब जीता।
1: भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय शतरंज के हिस्से में जोड़ दी है। ग्रैंड चेस टूर के फाइनल मुकाबले के शुरुआती बाजियों में पिछड़ने के बाद प्रज्ञानानंद ने शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने क्लासिकल चेस में 3-9 से हारने के बाद रैपिड सेक्शन में वापसी की और 8-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद ब्लिट्ज प्रारूप में मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा, इससे वो कुल 15-13 के स्कोर के साथ खिताब जीतने में सफल रहे। आनंद ने पहले सेमीफाइनल में कीमर को 19-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कारुआना ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को 18-12 से हराया। प्रज्ञानानंद 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उनकी मौजूदा रेटिंग 2750 है और अगस्त 2026 की ताज़ा फिडे क्लासिकल रैंकिंग में वो दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद को पहली वरीयता मिली थी, वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अमरीका के वेस्ली सो ने जर्मनी के विंसेंट कीमर जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2027 के ग्रैंड चेस टूर में सीधा प्रवेश भी मिल गया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है कि 21 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने। प्रज्ञानानंदा ने अपनी जीत को लेकर के क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
2: आई वांट अ क्लोज फाइनल मैच अगेंस्ट फेबियाना करुआना। Managed to come back today in rapid and blitz after being down by 6 points in a classical portion. It was really close. It went down to the wire till the last game. And I really enjoyed the fighting games.
0: अगर कभी वापसी की बात की जाए, हम जैसे क्रिकेट में करते हैं, फुटबॉल हॉकी में करते हैं कि आप 3 या 4 गोल से या इतने रन से पीछे थे और एक शानदार वापसी को जीत में बदल देते हैं, ऐसा ही कुछ चेस में देखने को मिला, जहां ये खिलाड़ी पहले दिन 3 दिन के ये फाइनल मुकाबले होते हैं और क्लासिक राउंड में 6 अंकों से पीछे था। दूसरे बार जब उनको मौका मिला बराबरी का तो अच्छी बढ़त थी, लेकिन ड्रॉ पे समाप्त हुआ। कल तक लोगों को लग रहा था कि किस तरह ये फाइनल में अपने आप को विजेता बना पाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो संतुलन और जिस खेल का प्रदर्शन किया, वाकई ऐतिहासिक प्रदर्शन जो भारतीय शतरंज में वर्षों तक याद किया जाएगा। और अब बात की जाए 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। यह प्रतियोगिता सितंबर में बेल्जियम के ब्रसल्स में खेली जाएगी।
3: इस वर्ष हुई 14 डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में से 5 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शामिल थी, लेकिन नीरज चोपड़ा 2 प्रतियोगिताओं में ही शामिल हुए। नीरज ने 19 जून को दोहा और 21 अगस्त को लुसाने में हुई डायमंड लीग में 2रा स्थान हासिल किया। कल ज्यूरिख में श्रृंखला के 14वें और आखिरी चरण के बाद आई अंक तालिका में नीरज 12 अंकों के साथ 6 स्थान पर रहे। हाल में हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वे 100% फिट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.5 मीटर का थ्रो किया। कूद और थ्रो स्पर्धाओं में अंक तालिका के शीर्ष 6 खिलाड़ी 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 5 सितंबर को होगी। श्रीलंका के उभरते स्टार रुमेश पथिरागे 39 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडर सेंट पीटर्स 35 अंक के साथ दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबेगो के केसोर वॉलकॉट 23 अंक लेकर 3रे स्थान पर हैं। नीरज पहली बार होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करने की राह पर हैं। यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होगी। 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के विजेता को अल्टीमेट चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश मिलेगा। चंद्रशेखर शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: नीरज चोपड़ा ने अपने लिए इतने बड़े मानक तय किए हैं कि जब सिल्वर मेडल भी ये खिलाड़ी जीतता है तो लोगों को लगता है कि जहां से स्वर्ण की गुंजाइश थी, और नीरज चोपड़ा की शानदार एंट्री पर जो उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल में की है। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला, जो अधिक जानकारी देंगे। विशेष, कल जब ज्यूरिख में टूर्नामेंट हुआ वहां पर नीरज नहीं थे, लेकिन

0: ने अपना स्पॉट फिक्स किया है। हालांकि इस बार चुनौती हर बार से अधिक होगी 2022 के डायमंड लीग चैंपियन के सामने।
1: बिल्कुल शक्ति, और इस बार चुनौती नीरज के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि इस बार जो उनका मुकाबला है वो पथिरागे जैसे खिलाड़ियों से होगा जो 90 मीटर का थ्रो बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा चोट के चलते काफी समय से अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो इस चोट से उबर पाए। उनका मुकाबला अभी जो होने वाला है पथिरागे से, उन्होंने अभी रिसेंट में ही 92.07 मीटर का थ्रो फेंका, इससे पहले भी वो 90 मीटर का थ्रो फेंक चुके थे, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि नीरज के ऊपर कितना दबाव होगा। इसके अलावा जूलियन वेबर जो है वो चोट के चलते इस प्रतियोगिता में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे, हालांकि उनका भी रिकॉर्ड 90.40 मीटर का रहा है। इसके अलावा एंडरसन पीटर्स हो गए और टोबैगो के कैशोर्ड वॉलकॉट, अमेरिका के कार्टिस थॉम्पसन, ये सभी खिलाड़ी जो है नीरज के सामने चुनौती पेश करेंगे। हालांकि नीरज ने एक बार 90.03 मीटर का जो है भला एक बार फेंका था, लेकिन उसके बाद से वो 90 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाए, तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए।
0: जी बिल्कुल, चुनौती देखने को मिलेगी। पथिरागे एक नए सितारे की तरह जैवलिन की दुनिया में सामने आए हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए ये चीज बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हुए 12 टूर्नामेंट में से 11 टूर्नामेंट का खिताब इस खिलाड़ी ने जीता है, और तीन बार नीरज चोपड़ा जब आमने सामने थे तो उनको दूसरे स्थान या फिर थोड़ा पथिरागे से पीछे रहकर ही संतोष करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती इंतजार कर रही होगी।
1: जी बिल्कुल, नीरज के लिए एक बहुत ही कड़ी चुनौती जो है इंतजार कर रही है, और इस सत्र में जो है 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं जूलियन वेबर, इससे नीरज को एक फायदा यह मिल सकता है कि वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अरशद नदीम, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, वो खराब फॉर्म और अपनी चोट के चलते जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी हद तक नीरज के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन एक कड़ा मुकाबला हो सकता है 4 से 5 सितंबर को खेल प्रेमियों को देखने को मिले, और उम्मीद होगी कि पिछले चार, अगर हम डायमंड लीग फाइनल की बात की जाए, 2022 में स्वर्ण पदक, 2023, 2024, 2025 लगातार नीरज चोपड़ा जो है वो को विनर रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इस बार सबको उम्मीद होगी अपने स्टार खिलाड़ी से कि शानदार फॉर्म के साथ मैदान पर लौटें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और नीरज चोपड़ा के बाद अब बात की जाए स्क्वाश की, जहां पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के पुरुष वर्ग के फाइनल में आज भारत के वेदनवन सेंथिल कुमार का मुकाबला विश्व की 55वीं वरीयता प्राप्त हंगरी के बलाज फारकस से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में भारत के वीर चोटरानी को एक कड़े मुकाबले में 9-11, 11-7, 11-8, 1-11 और 12-10 से हराया था। वहीं फारकस ने मिश्र के मुस्तफा एलसीटी को लगातार सेटों में 11-4, 11-3, 11-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो जिस तरह की फॉर्म देखने को मिली, हालांकि वीर चोटरानी का उनको बाहर होना पड़ा क्योंकि सेमीफाइनल के इस ड्रॉ में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी आ गए थे, ऐसे में उम्मीद होगी कि वो छोटी सी कसक शायद फाइनल में दोनों खिलाड़ी ना भिड़ पाए, लेकिन सेंथिल कुमार पूरी करते हुए नजर आएंगे और इस बेहतरीन खिलाड़ी से टीम को एक पदक की जरूरत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में आगामी खेल प्रतियोगिताओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करके भारत को वैश्विक खेल गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स तथा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के संबंध में होनी हुई थी। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। ये समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब अहमदाबाद कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की मेजबानी करने जा रहा है। 2029 में यहां पर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने हैं, 2023 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के, और अहमदाबाद मेजबानी करेगा इस बड़े आयोजन की, और कहीं ना कहीं नजर होगी 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पर। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां महिला एशिया कप क्रिकेट 2026 आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। आज थाईलैंड और हांगकांग के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। एक रिपोर्ट।
2: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम इस बार T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएगी। टीम से इस बार भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय टीम ग्रुप चरण में अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त

0: को थाईलैंड से, 3 सितंबर को दूसरा हांगकांग से और 5 सितंबर को तीसरा अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगी। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के ऊपर टीम को शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। शेफाली और मंधाना दोनों की हालिया फॉर्म शानदार रही है। मंधाना इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रही है। वहीं जेमिमा रॉड्रिग्स की गैर मौजूदगी में कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी। ऋषा घोष और दीप्ति शर्मा निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगी। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और रेणुका ठाकुर तेज गेंदबाजी की कमान संभालती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी श्री चरणी और राधा यादव पर होंगी। चरणी इस साल खेले 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 27 विकेट चटकाए हैं। भारत ने T20 एशिया कप में 25 मुकाबले खेले हैं। इसमें से हरमनप्रीत एंड कंपनी ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि महज 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम साल 2012, 2016 और 2022 में T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि एक और बड़ी प्रतियोगिता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने है। विशेष हमने अभी पूल देखा जहां भी भारत के साथ हांगकांग, थाईलैंड और पाकिस्तान है, कितनी कड़ी चुनौती होगी जो कि इसके बाद सीधा सेमीफाइनल का दौर होगा।
2: ये चुनौती भारतीय टीम के लिए इतनी बड़ी नहीं साबित हो सकती है क्योंकि भारतीय टीम जो है 2025 में ओडीआई विश्व कप जीत चुकी है। हालांकि अभी 2026 में उनको हार का सामना करना पड़ा था T20 विश्व कप में, लेकिन थाईलैंड और हांगकांग जैसी जो टीमें हैं वो ट्रेडिशनली जो है क्रिकेट नहीं खेलती है, तो सिर्फ भारत का मुकाबला जो होगा एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान से होगा और सेमीफाइनल की जो राह है वो काफी आसान नजर आ रही है भारत के लिए।
1: जी बिल्कुल, आसान राह होगी, लेकिन भारत चाहेगा कि तीनों के तीनों मुकाबलों को जीता जाए। और इस प्रतियोगिता को लेकर के आइए सुनते हैं कि एशियाई खेलों से ठीक पहले अपनी तैयारियों को लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा है।
3: आई थिंक एशिया कप इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रियली टेस्ट योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म एट अ लेवल विच यू एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम योर टीम, एंड आई थिंक दिस टूर्नामेंट विल डेफिनेटली गिव अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस।
1: और भारत इस एशिया कप के तुरंत बाद एक हफ्ते के भीतर ही जापान का रुख करेगी, जहां पर टीम जो है एशियाई खेलों में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है वहां पर प्रतिभाग करेगी। इससे पहले भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो विशेष अपने खिताब के बचाव के लिए हरमनप्रीत कौर की टीम उतरेगी जापान में।
2: भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और भारत को अपना मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल में खेलना है वो जापान के साथ खेलना है। फिर से एक बार वही बात कि जापान भी ट्रेडिशनली क्रिकेट नहीं खेलती है, तो भारत के लिए एक बार फिर से सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी और भारत स्वर्ण पदक की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत के लिए राह काफी हद तक वो मुकाबला आसान हो सकता है और टीम भी चाहेगी कि हर मुकाबले को उसकी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा जाए, जैसा कप्तान ने बताया भी इसके पहले जब सभी कप्तान मिले थे। और इसके बाद अगले वर्ष की शुरुआत में पहली बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है, जहां भारत की नजर एक लंबे अभियान पे, इसके बाद भारत जिम्बाब्वे के साथ कुछ T20 मैच खेलेगी, तो उम्मीद होगी कि उसको भी जीत करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम के निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और

0: की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
2: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
3: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
1: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।
3: जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से। ये गाना आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं सिलसिला है प्यार का। इस फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: रुकना तो हम चाहते हैं, लेकिन वक्त हो चला है अलविदा लेने का। अगली मुलाकात के वादे के साथ दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत। आज का आपके लिए कार्यक्रम होता है संपन्न। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को।

0: अपने दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

0: 1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म आनंद।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसा।

0: भगत हसाए।
1: ऋषि दा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: निशिदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में निशिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने निशिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में निशिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

0: ऋषि दा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषि दा का मुंबई में निधन हो गया।
1: तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सब।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं आशा भोसले के स्वर में गाये फिल्म काजल के नगमे के साथ। कलाम साहिल लुधियानवी का है और मौसिकी रवि की।

0: विचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
2: FM 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।